0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: It's festive season. Whenever you are feeling sad and lonely, just remember, आप गरीब भी हो, आपके पास उतने पैसे हैं नहीं जितने आप चाहते हो, और आपके पास उस तरह का पार्टनर भी नहीं है जो आप चाहते हो. मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि फेस्टिव सीजन अकेला आपका जीना मुश्किल कर रहा है. अगर ये फेस्टिव सीजन नहीं होता तो भी आपके पास 555 बेहतर रीजंस हैं टू फील बैड फॉर योरसेल्फ. और अगर बहुत ही ख़राब लग रहा है तो एटलीस्ट ये सोचो कि बाहर अभी सब गरबा कर रहे हैं लेकिन मैं स्टूडियो में बैठकर आपसे बात कर रही हूँ. व्हाट डज आई टेल यू, पिक अप द फोन, कॉल मी, सेंड मी योर नंबर. कॉल भी मैं ही कर दूंगी बिकॉज गरीब, राइट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. और यार ऐसे इतना बुरा नहीं फील कराते. कुछ लोग गरबा कर रहे हैं अपने नॉट सो प्रेफर्ड पार्टनर के साथ, उनके बारे में भी सोचो, वो भी एक जिंदगी है. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने डेटिंग ऐप पर ये तो कह दिया दैट यू लव टू रन, लेकिन फाइनली जब हाफ मैराथन भागने की बारी आई विद योर पोटेंशियल डेट, देन यू रियलाइज कि आप सिर्फ अपने बेडरूम से किचन तक भागते हो.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: इफ यू हैव एनी सच सीक्रेट कन्फेशन तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. You are a very naughty boy.
3: जी बिल्कुल naughty boy.
1: बिल्कुल naughty. Accept भी कर रहे हैं कि बिल्कुल. आपने जब मुझे बताया ना आपका confession on the gram, I was like, I need to talk to this guy right now. So hit me with your confession.
3: तो basically क्या है कि मेरी girlfriend जो है वो बहुत ही मेरे को romantic लंबे लंबे messages romantic भेजती. तो फिर मेरे पास ना प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आप कितने टाइम तक वो थम्स अप या वो हार्ट इमोजी डालते रहोगे कि हाँ. फिर वो कहते कि तुमने पढ़ा नहीं, तुमने हाँ. तो बस ऐसे ही डाल दिया. हाँ. तो फिर मैं काफी परेशान था. तो हाँ. मेरा एक आईटी दोस्त था. हाँ. तो बोला ये हो रहा है, मेरे हाँ. को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ. तो हाँ. उसने बोला ये ऐसे लिखवा ले.
1: हाँ.
3: तो फिर मैंने करा और वो खुश हो गई कि ये तुमने कितने सोच के लिखा है. तो मैंने कहा ठीक है, तुम पिछले 3 महीने से तो मेरा रिलेशनशिप ये ही चला रहा है.
1: आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा तब क्या होगा, सोचा आपने इसके बारे में कि आप इतने दूरदृष्टि इंसान हो?
3: बिल्कुल, बिकॉज मेरे को मेरे आईटी वाले दोस्त ने बोला कि सब कुछ चैट में है, अगर वो पूछेगी तो वो तुम उस डेट पे जाके देख लेना क्या उसने बोला था.
1: हाँ.
3: और फिर उसको फिर सुना देना तोते की तरह.
1: आपने पता कितने सारे
3: करना पड़ता.
1: Which is true, and that's what I'm saying, कि आपने कितने सारे ऐसे नस कटे आशिकों की जान बचाई है जिनकी गर्लफ्रेंड ऐसे डिमांडिंग है कि तुम लंबे रोमांटिक टेक्स्ट नहीं भेजते. अब AI करेगा उनका डर्टी वर्क जस्ट फॉर दैट, क्योंकि आपने इतनी मदद की है लोगों की. क्या मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ?
3: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए तो आपसे
1: कनेक्ट करा. There you go.
4: You've been roshified.
1: It was very nice talking to you. और अगली बार आप मुझे इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज भेजोगे, आई एम रियली गोइंग टू डाउट वेदर यू रोट इट या फिर आपने AI से लिखवाया है. जस्ट से
3: आपके लिए तो मैं ही लिखता
1: हूं. हाय, थैंक यू मेरी जान. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो ऑन 9930983983 विद योर नंबर एंड आई कॉल यू. इतने सारे ऑप्शन दे दिए बट वन थिंग रिमेन्स द सेम, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: नवरात्रि का माहौल चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब पता करते हैं हमारे साथ और कौन है जो फोन लाइन पर है। हेलो,
2: हाय प्रिसला, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, दिस इज अनु।
1: हाय अनु, क्या चल रहा है नवरात्रि में?
2: कुछ नहीं, प्रिपरेशन चल रहा है। आई हैव ट्विन गर्ल्स हु आर 2 इयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड, सो आई एम प्लानिंग टू ड्रेस देम अप एंड देन लाइक हैव फन, डू सम डांसिंग विद देम।
1: ओह, दैट्स सो क्यूट। तो चलिए जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आपको फटाफट से बिल्कुल क्विकली आंसर करना है।
2: श्योर,
1: टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड, जल्दी से मुझे बताइए विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी?
2: जयपुर।
1: ऑलराइट, दैट्स द करेक्ट आंसर। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
6: दे सेल natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
9: Tera kya hoga, Kalya?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.

0: ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: इस फेस्टिव सीजन यू डोंट हैव टू बी सिंगल एनीमोर और उसके लिए आपको डेटिंग ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटलॉग यू आर चूजिंग आउट ऑफ, आपको फोरहेड पर एक किस मिल सकती है, एक आफ्टर पार्टी मिल सकती है या द होल हॉग इफ यू नो व्हाट आई मीन. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, डिलूलू नहीं हुई हूँ इस फेस्टिव सीजन. व्हाट हैज हैपेंड इज दैट गरबा नाइट्स के लिए अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो 2 घंटे की बुकिंग आप एक पार्टनर की कर सकते हो फॉर मात्र 1,000 रुपये. अब ये नया ट्रेंड है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं. सिल्वर कैटेगरी में बेसिक स्टेप्स मिलेंगे, माथे पर चुम्मा बट नोवेयर एल्स. एंड अगर आपने एक प्लैटिनम पैकेज लिया देन यू इवन गेट टू अटेंड एंड

0: after party with this person. अब location terms authenticity may vary. तो अगर आपकी vicinity में ऐसा scheme/scam चल रहा है, is it check करके बताना, how authentic is it really? और अगर आपके पास इसकी authenticity check out हो भी जाए, would you actually want to dance with someone you've hired to dance with you? और इसका जवाब देने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो on the gram या Facebook. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के spelling है R-O-C-H-I-E. And while you find me on your SM, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
1: तेरी मम्मी की जय.

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: इस फेस्टिव सीजन आपको कोई नहीं रोक सकता है टू अटेंड एनी पार्टी ऑफ योर चॉइस. और जब आपके रिलेटिव्स आपसे ये पूछें एम वर्ड वाला क्वेश्चन, यानी कि बेटा अगले साल तो लगता है तुम्हारा नंबर है क्यों, देन यू जस्ट टर्न अराउंड और उन्हें कंफ्यूज कर दो ताकि जिंदगी में कभी तुमसे शादी की बात ना करें. और कंफ्यूज कैसे करना है वही तो बता रहे हैं. करना सिंपल सा काम है, चार पांच एस्ट्रोलॉजिकल बड़े बड़े वर्ड सीख कर जाओ. जैसे ही मौसी जी एम वर्ड वाला बॉम्ब ड्रॉप करे कि बेटा शादी का क्या सीन है, तो आप बताइए कि लिब्रा देख रहा है सीधा शनि की तरफ और शनि के एरिया में चल रहे हैं बहुत सारे सोलर स्टॉर्म्स. मौसी जी ऐसे हालात में हम कैसे शादी कर सकते हैं? अगर बाय दिस टाइम मौसी जी अपना चौथा गोलगप्पा गोलगप्पे काउंटर पर नहीं खा रही होंगी, हमारा नाम बदल देना. यू आर वेलकम फॉर दिस ऑलरेडी. और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
2: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है। एक जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: With Mirchi, fresh maal.
2: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दे नाल काम ना करे।
3: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं, आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
7: Tera kya hoga, Kalya?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो हिप्स लिप्स आईज थाइस सब गजब

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन आल्सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

लोग आपके लिए होंगे कि सात दिन है और सात कलर्स हैं, लेकिन मेरी बेस्टी के लिए इट इज सिंपल. आई आस्क्ड हर कि यार तू क्या करने वाली है फॉर द फेस्टिव सीजन, लाइक यू नो वी हैव अ वीक अहेड ऑफ इट, एंड शी इज लाइक यार सिंपल है, ब्लैक हॉट ऑलवेज वर्क्स. आई वाज लाइक लेकिन ये तो कलर नहीं है किसी भी दिन का. शी वाज लाइक कलर वलर से क्या देना है, हम काले कपड़े पहनेंगे और सामने वालों का काला दिल है, तू उसके बारे में कमेंट ही नहीं करी है, मेरे काले चनिया चोली के बारे में कैसे कमेंट कर सकती है. विच आई स्टैंड करेक्टेड. अगर आप भी अपनी बैकलेस चनिया चोली में यू आर प्लानिंग टू लाइक किल अ कपल ऑफ गाइस विद जस्ट हाउ हॉट योर बैक इज, फोटो भेज दो, हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम किस

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जब हम तुमसे तमीज से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हारे मैसेजेस का ड्राई टेक्सटिंग में जवाब दे रहे हैं, तुमने दो बहुत बेहतर क्वेश्चंस पूछे, हमने आंसर दिया येस और नो में, वर्स्ट केस सिचुएशन हम तुम्हें थम्स अप भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि गिड़गिड़ाओ हमारे पैरों पर, शर्म करो, कुछ गाड़ी लेकर आ जाओ, गाड़ी नहीं है, इतने गरीब हो फिर भी तुम्हें डेट कर रहे हैं, साइकिल लेकर आ जा यार साथ वाले बाबू भैया की, और बोल सॉरी, तुझे पता नहीं है क्यों फिर भी बोल सॉरी, तेरी शक्ल ही सॉरी है यार, हमें सॉरी फील करना चाहिए कि तुझ जैसे इंसान को डेट करे, जैसे समझ नहीं आ रहा, व्हेन वी आर सेइंग नहीं करनी है बात, विच मीन्स कि सॉरी बोल, ऑब्वियसली तेरी गलती है, हम बोल रहे हैं नहीं मिलना है, विच मीन्स आ प्लीज प्लीज बोल, मम्मी को बोल, प्लीज इसको बोल दो, आंटी एक बार मेरी बात सुन ले। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया तो आपको स्पेशल पर्सनलाइज्ड रोशी क्लासेस की जरूरत है, वो मैं आपको दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आई केयर फॉर द थिंग कॉल्ड लव, एंड उसके लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, मेरे सामने आपको गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये काम मेरे एक्सेस बखूबी करते हैं, ऑन दैट नोट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने डेटिंग ऐप पर ये तो कह दिया दैट यू लव टू रन, लेकिन फाइनली जब हाफ मैराथन भागने की बारी आई विद योर पोटेंशियल डेट, देन यू रियलाइज कि आप सिर्फ अपने बेडरूम से किचन तक भागते हो.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: इफ यू हैव एनी सच सीक्रेट कन्फेशन तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए. नॉन जजमेंटल कान मेरी जान, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड वी गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. You are a very naughty boy.
3: जी, बिल्कुल naughty boy.
1: बिल्कुल naughty. Accept भी कर रहे हैं कि बिल्कुल. आपने जब मुझे बताया ना आपका confession on the gram, I was like, I need to talk to this guy right now. So hit me with your confession.
3: तो basically क्या है कि मेरी girlfriend जो है वो बहुत ही मेरे को romantic लंबे लंबे messages romantic भेजती. तो फिर मेरे पास ना प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आप कितने टाइम तक वो थम्स अप या वो हार्ट इमोजी डालते रहोगे कि फिर वो कहते कि तुमने पढ़ा नहीं, तुमने तो बस ऐसे ही डाल दिया. तो फिर मैं काफी परेशान था. तो मेरा एक आईटी दोस्त था, उसको बोला ये हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं. तो उसने बोला ये ऐसे लिखवा ले. तो फिर मैंने करा और वो खुश हो गई कि ये तुमने कितने सोच के लिखा है. तो मैंने कहा ठीक है, तुम पिछले 3 महीने से तो मेरा रिलेशनशिप ये ही चला रहा है.
1: आपकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाएगा तब क्या होगा, सोचा आपने इसके बारे में क्या, आप इतने दूरदृष्टि इंसान हो?
3: बिल्कुल, बिकॉज मेरे को मेरे आईटी वाले दोस्त ने बोला कि सब कुछ चैट में है, अगर वो पूछेगी तो वो तुम उस डेट पे जाके देख लेना क्या उसने बोला था. हाँ. और फिर उसको फिर सुना देना तोते की तरह.
1: आपने पता
3: कितने
1: सारे
3: करना पड़ता.
1: Which is true, and that's what I'm saying.

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अभी मेरे साथ में हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं। लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है। हेलो,
2: हाय, माय नेम इज यास्मिन।
1: हाय यास्मिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम।
2: थैंक यू।
1: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है?
2: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम। सो या, एवरीबॉडीज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन।
1: ओह, दैट्स स्वीट। सो इंडिया में कहां से हुआ?
2: इंडिया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे।
1: बॉम्बे, ऑलराइट। तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है। विगारी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का हाई कॉन्टेस्ट चल रहा है। मेरा सवाल यास्मिन से ये है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है? फटाफट से आंसर बताइए।
2: द गंगा रिवर।
1: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर। कंग्रेचुलेशन। और आप अगले राउंड में मूव करती हैं।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

वैसे तो मेरे उस बॉयफ्रेंड को रिविजिट करने के कोई खास इरादे नहीं थे जब हम ब्रेकअप कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, शायर था, उसने मुझे ये लाइन लिखकर भेजी जो आई थिंक ही स्टोल फ्रॉम गुलजार साहब इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और वो लाइनें थी, तुम लौट कर आने की तकलीफ मत करना, हम एक ही मोहब्बत दो बार नहीं किया करते। एंड आई वॉज लाइक, जस्ट इन्हीं लाइनों की वजह से शायद फिर से इस मोहब्बत को चांस दे देना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दैट आपको किसी इंसान से सिर्फ इसलिए मोहब्बत हुई है क्योंकि जिस तरह की चिट्ठियाँ वो आपको लिखते हैं या जिस तरह के गाने वो गाकर आपको भेजते हैं, उनसे आपको मोहब्बत है और बाकी का इंसान तो एडिशनल बोनस पैकेज है? अगर हाँ, अगर किसी आर्टिस्ट से या शायर से मोहब्बत की है, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और उसके बारे में बात करने के लिए या फिर न करने के लिए ढूंढो मुझे इंस्टा पर या FB पर, बातें करते हैं, आज थोड़ा सा रूमानी हो जाते हैं। एंड ऑन दैट नोट, जिसके पास लव है उसके पास सब है। एंड आई

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: by Virani Jewelers.
1: नवरात्रि का वो प्रिसला तुम्हारे मिर्ची मॉर्निंग्स और आप पता करते हैं हमारे साथ और कौन है जो फोन लाइन पर है.
2: प्रिसला गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग हाउ आर यू.
2: आई एम गुड दिस इज अनु.
1: हाय अनु क्या चल रहा है नवरात्रि में.
2: कुछ नहीं प्रिपरेशन चल रहा है. आई हैव ट्विन गर्ल्स हु आर 2 years एंड 8 months ओल्ड सो आई एम प्लानिंग टू ड्रेस देम अप एंड देन लाइक हैव फन डू सम डांसिंग विद देम.
1: ओह दैट्स सो क्यूट. तो चलिए जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आपको फटाफट से बिल्कुल क्विकली आंसर करना है.
2: श्योर.
1: टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड जल्दी से मुझे बताइए विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी.
2: जयपुर.
1: ऑलराइट दैट्स द करेक्ट आंसर. जयपुर इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉड, ये तो बता तू है गॉड।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी होता होगा कि तुमने कोई चीज बहुत मन से, बहुत शिद्दत से बनाई हो, एंड यू वांटेड एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों को ना तारीफ करने का मन ही नहीं किया तो डिसअपॉइंटिंग तो लगता ही है। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, और आते ही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगा था देवानंद और विजय आनंद साहब को, दोनों ब्रदर्स को, जब उन्होंने बनाई थी फिल्म गाइड। तो जब गाइड का प्रीमियर हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री वाज इनवाइटेड, एंड विजय आनंद को लगा था कि थोड़ी ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी उनकी जितनी भी कमर्शियली सक्सेसफुल, यू नो, चटपटी मसालेदार बॉलीवुड फिल्म है, उनसे अलग है, तो लोग आकर के ना उनको अप्रिशिएट करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे कि कितना अलग कुछ बना दिया है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, नोबडी वॉकड अप टू हिम एंड कंग्रेचुलेटेड हिम, एंड दिस लेफ्ट हिम शैटर्ड कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों। लोगों को एक्चुअली गाइड का क्लाइमैक्स और इतनी अलग फिल्म ना पसंद ही नहीं आई, स्पेशली जो लोग प्रीमियर देखने आए थे, यानी भाई इंडस्ट्री के लोग। फिर क्या हुआ, गाइड यू नो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब बताऊंगी, अभी अभी तो आई हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी बॉक्स ऑफिस पे खुली तो एकदम फुल हाउस थी, लेकिन उसके बाद सब डिप करने लगा। लोग आ नहीं रहे थे देखने, टिकट्स बिक नहीं रहे थे। पुरानी जीन्स पे आप हूं श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म गाइड, जिसमें थे देव साहब, उनके भाई विजय आनंद ने फिल्म बनाई थी ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर बुक द गाइड विच वॉज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि भाई देव साहब की फिल्म है तो लोग डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे इसको देखने गए, लेकिन लोगों को इतनी अनकन्वेंशनल ऑफ बीट फिल्म और स्पेशली क्लाइमैक्स ना समझ में आने के चक्कर में ना कुछ ही दिनों में इसका कलेक्शन डिप करने लगा। बट कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और लोगों को जब इसका क्लाइमैक्स कुछ समझ में आया तो लोग वापस इस फिल्म को देखने लगे। आई मीन दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसको लोगों ने दो दो तीन तीन बार जा करके देखा एंड इसीलिए बाद में इसका कलेक्शन ओ हो आसमान छूने लगा। दैट इज वाई 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे इस फिल्म ने उस साल। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाका हार चल रहा है। अगली कंटेस्टेंट जो है वो मेरे साथ लाइन पर है। लेट्स फाइंड आउट हु दैट इज। हेलो,
3: हाय
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: शीतल।
2: हाय शीतल, हाउ आर यू?
3: गुड, हाउ आर यू?
2: I am good. Thank you so much. Happy Navratri to you.
3: Same to you.
2: और एक्चुअली में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ और उसका जवाब देने पर डिपेंड करेगा कि आप अगले राउंड में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ऑलराइट, मेरा सवाल अगले राउंड के लिए आपसे है कि कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? फटाफट से आंसर बताइए।
3: सिटी ऑफ द ड्रीम्स, बॉम्बे।
2: बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। एंड बॉम्बे यानी कि मुंबई is also yes. the city of dreams in India. Thank you so much Sheetal for participating. Congratulations, aap agle round mein pahunch gaye hain.
1: Mirchi 9 lakh ka haar presented by Virani Jewelers.
4: Tera kya hoga Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
4: Ab mirchi kha.
6: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इन्होंने तो इसको द मिसगाइडेड काइट बोल दिया था। पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म जिसमें थी वहीदा रहमान, जिसमें थे देव आनंद साहब, विजय आनंद ने बनाई थी। मूवी का नाम द गाइड। ये फिल्म जो थी ये अडेप्टेशन थी आर के नारायण की वेरी पॉपुलर फिल्म द गाइड की। तो भाई उनसे यू नो सारी परमिशंस ली गई थी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बॉलीवुड का तड़का तो डालना ही था ना, इसीलिए थोड़ा रोमांस एंगल भी दिखाया गया। बट ये बात आर के नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आफ्टर ही सॉ द फिल्म ही गेव एन इंटरव्यू टू अ मैगजीन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये द मिसगाइडेड गाइड है। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने विद मी श्रेया। तो बस यहीं पे रहना पड़ेगा।

0: ना चुस्त। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये लाइन दी थी हसरत साहब ने, आगे इसको कंटिन्यू किया शैलेंद्र जी ने।
1: जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सता।
0: सो दिस लाइन, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, ये वाली जो लाइन है ये हसरत साहब की थी, लेकिन अगर आप क्रेडिट देखोगे तो ये शैलेंद्र जी का है, बिकॉज आफ्टर दैट द एंटायर सॉन्ग वाज रिटन बाय हिम। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जींस।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio, available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

विजय आनंद ने दादा को बोला था कि इस पूरे गाने को ऐसे कंपोज करो जैसे हर स्टैंजा ना अलग गाना है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड, इस फिल्म की बातें और इस फिल्म के गाने। अच्छा, ये एक गाना जो गाइड का था ना, दिस वॉज अ वेरी टफ सॉन्ग टू कंपोज। एक तो ये लंबा भी था, इसमें हरकतें भी बहुत सारी थी और दादा को ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो विजय आनंद हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म, उन्होंने पता है उनसे क्या कहा कि हर स्टैंजा को ऐसे कंपोज करो जैसे कि ये अलग गाना हो। एंड विजय आनंद ऑल्सो थॉट कि गाइड में ना वो हर स्टैंजा को अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे, ऐसे ही पिक्चराइज करेंगे, जबकि वो हुआ नहीं बिकॉज वहीदा रहमान का खूबसूरत डांस इस गाने में था। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दादा ने अपना पूरा बटुआ खाली कर दिया था मेलोडी से भरा हुआ फॉर दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड 1970s में फिल्म आई थी गाइड, जिसकी आज बात हो रही है। सो नवकेतन फिल्म्स यानी देव साहब का बैनर और उनके भाई विजय आनंद का बैनर, वो हमेशा जब भी फिल्म बनाते थे तो एसडी बर्मन साहब को हायर करते थे। इस बार क्या हो रहा था कि दादा उस टाइम पे आ चुके थे जब उनकी जगह नए म्यूजिशियंस को हायर किया ना हो। सो एसडी बर्मन साहब को ना एक मौका, वो एक फिल्म चाहिए थी जिसमें वो अपना मिरेकल एक बार फिर से दिखा पाए, एंड गाइड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। मेलिफ्लुइस ट्यून्स लाइक आओ, गाता रहे मेरा दिल ले लो, तेरे मेरे सपने ले।

लो, यू नो, इतने सारे गाने, कांटों से खींच के आंचल ले लो, पिया तो से ले लो। तो इसी बात पे आज फिर जीने की तमन्ना है। कमिंग ऑल राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया। एस डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लता जी की आवाज़ है और वहीदा रहमान का डांस था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स। अप नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

स्टीव आनंद को लगा कि उनका कोई सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं इस फिल्म में, और फिल्म काफी टाइट चल रही, काफी स्ट्रेस में चल रही है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड टुडे। सो देव साहब ने जब ये पूरी पिक्चर बन गई और देखी अपने भाई विजय आनंद, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, उनके साथ बैठ करके ना, तो देव साहब को लगा कि भाई इसमें मेरा कोई सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली एक आध गाना ऐसा सुपर डुपर हिट देते थे अपनी फिल्म का, जिसमें बस वो गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जैसे कि हम दोनों में है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता, राइट। तो क्या हुआ, जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई, फिर इस पे म्यूजिशियंस को वापस बैठाया गया। एस डी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी ने गाना लिखा, एंड ऑफ कोर्स देव साहब इसमें एकदम अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं और गा रहे हैं मेरा दिल। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया अनपुरानी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची साथ जीतू राज Only on Mirchi. It's hot.
1: And Drishyam 1 एक कल्ट थी. Drishyam 2 ओकी डोकी थी. अब it was a powerful film. But Drishyam 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब Drishyam जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है. एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले हैं. फिल्म का बीजीएम इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले. एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi. It's hot.
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
3: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है.
5: एक ही होता है.
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

जब पहला सीन लिया गया तो डायरेक्टर विजय आनंद को लगा कि देव साहब के आगे वैजंती माला तो थोड़ी चबी चबी लग रही है पुरानी जीन्स पे. आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड. सो वेस्ट किया गया था और डायरेक्टर विजय आनंद ने ना ऐसे ही जब फर्स्ट टेक लिया तो दे थॉट कि वैजंती माला देव साहब के आगे थोड़ी प्लम्प लग रही है. अब भाई विचार विमर्श हुआ देव साहब से भी, फिर क्या हुआ, इन केम वहीदा रहमान. और जब वहीदा रहमान आती थी तो एक्टिंग के साथ अपने डांसिंग स्किल्स भी लेकर के आती थी. ये आपको देखने को मिलेगा गाइड में जब उन्होंने वो गाना किया है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है. ओ हो हो पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है ना तो बस इस आवाज़ के पीछे आपको मिल जाऊंगी फेसबुक और इंस्टा पे. हैंडल है मेरा RJ Shreya with Love. That's RJ SHREYA with Love.

देव साहब को ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया था। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, विजय यानी उनके भाई विजय आनंद, हु वाज एडिटिंग द फिल्म, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, चलो एक काम करते हैं, गाना बना लो, बाद में देखेंगे रिटेन करना है कि नहीं करना है। बट बाय द टाइम इस गाने की शूट एंड हुई, ही लव्ड द सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, गाइड फिल्म की बात हो रही है, देव साहब की फिल्म थी ये, एंड इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले एस टी बर्मन साहब, गाने लिखने वाले शैलेंद्र जी, और उन्होंने एक गाना लिखा जिसपे वहीदा रहमान ने क्या परफॉर्मेंस दी। द सॉन्ग वॉज, अब ये गाना जब बनने लगा ना तो देव साहब को बिल्कुल नहीं पसंद आया, उनको लगा कि क्यों ही रख रहे हैं हम ये गाना। लेकिन बाय द टाइम ये गाना शूट हो करके एकदम कंक्लूड हो रहा था, ही लव्ड द सॉन्ग, एंड फिर इस गाने को रिटेन किया गया, एंड व्हाट अ प्रिटी प्रिटी सॉन्ग। ये गाना मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ तो फिर से नहीं सुनाऊंगी। लता जी का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अभी मेरे साथ में हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं। लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है। हेलो,
3: हाय, माय नेम इज यास्मिन।
2: हाय यास्मिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम।
3: थैंक यू।
2: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है?
3: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम। सो या, एवरीबॉडीज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन।
2: ओह, दैट्स स्वीट। सो इंडिया में कहां से हुआ?
3: इंडिया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे।
2: बॉम्बे, ऑलराइट। तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है।
3: Sure.
2: विगारी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। मेरा सवाल यास्मिन से ये है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है? फटाफट से आंसर बताइए।
3: द गंगा रिवर।
2: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर। कंग्रेचुलेशन। और आप अगले राउंड में मूव करती हैं।
1: मिर्ची नौ लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ये मूवी दो वर्जन्स में शूट हुई थी, एक इंग्लिश वर्जन में इन कोलैबोरेशन विद पर्ल एस बक, डायरेक्टेड बाय टेड डैनियल ल्यूस्की, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस देव आनंद साहब टू वेस्टर्न ऑडियंस। और हिंदी वर्जन उसके बाद में आया जब देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। पहले ये था कि भाई एक ही वर्जन को वापस शायद डब कर लेंगे, लेकिन नहीं, देव साहब को लगा कि भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी हिंदी ऑडियंस के साथ। और फिर हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैशेस भी हुए थे, जिसकी वजह से देव साहब ने इसकी बागडोर संभाली, अपने भाई को भी संभलवाई और नव केतन प्रोडक्शंस के अंडर में ये फिल्म को बनाया गया। टॉकिंग अबाउट द फिल्म ऑफ कोर्स गाइड, पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो हाईवे पे भी जाना है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं, कह रही होती हैं।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: साथ जीतू राज
1: देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी

0: पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार फिल्म फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: नवरात्रि का माहौल चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब पता करते हैं हमारे साथ और कौन है जो फोन लाइन पर है। हेलो,
2: हाय प्रिसला, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, दिस इज अनु।
1: हाय अनु, क्या चल रहा है नवरात्रि में?
2: कुछ नहीं, प्रिपरेशन चल रहा है। आई हैव ट्विन गर्ल्स हु आर 2 इयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड, सो आई एम प्लानिंग टू ड्रेस देम अप एंड देन लाइक हैव फन, डू सम डांसिंग विद देम।
1: ओह, दैट्स सो क्यूट। तो चलिए जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आपको फटाफट से बिल्कुल क्विकली आंसर करना है।
2: श्योर।
1: टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड, जल्दी से मुझे बताइए विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी?
2: जयपुर।
1: ऑलराइट, दैट्स द करेक्ट आंसर। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स। रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची के साथ
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: टॉलरेंस क्या वीकनेस होती है या असली स्ट्रेंथ, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इसमें वीकनेस की भी बात आ जाती है कि टॉलरेंस कभी कभी एक वीक स्वभाव भी देखा जाता है कि ये टॉलरेट करता रहता है, रीढ़ की हड्डी नहीं है ये, कोई भी चीज, ये वीक आदमी है। तो इसका इक्वेशन को कैसे देखें हम?
4: टॉलरेंस को वीकनेस इसलिए समझा जाता है क्योंकि हमें रिएक्ट नहीं करना है लेकिन रिस्पॉन्स तो देना है ना।
3: हाँ बिल्कुल।
4: एक होता है कि हम उस चीज को छोड़ ही देते हैं।
3: हाँ,
4: वो भी गलत है।
3: हाँ बिल्कुल,
4: वो भी गलत है। बाहर जो करना है वो तो करना है।
3: हाँ।
4: आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको एक्ट करना है, आपको असर्टिव होकर के कुछ बोलना है, आपको किसी को कई बार पनिश भी करना होता है लॉस के अकॉर्डिंग, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना होता है, वो सब करना होता है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं और कोई आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है, देन इट कम्स अक्रॉस एज वीकनेस। टॉलरेंस इज अ पावर एट द लेवल ऑफ इमोशंस, कि बाहर कुछ हुआ बट दैट डिड नॉट अफेक्ट यू इनसाइड, मतलब उसने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन स्टेबिलिटी से आपको जो करना था वो भी आपने किया।
3: आपने किया।
4: जैसे हम एक डॉक्टर को देखते हैं, आप उसके पास किसी को ले आओ, कोई एक्सीडेंट में है, कोई चाहे उसके लिए कोई आर्मी वाला हो या कोई टेररिस्ट हो,
3: सेम है उसके लिए,
4: सेम हो जाता है, अफेक्ट नहीं हुआ ना उस चीज से। अच्छा, किसको पहले ट्रीट करेगा?
3: जो पहले आया है, जो ज्यादा गंभीर हो।
4: अगर दोनों सेम आए हैं, एक टेररिस्ट है और एक है जो देश के लिए सेवा करता है, और दोनों आए हैं वहां पर, दोनों, वो किसको पहले ट्रीट करेगा?
3: जो देश के लिए सेवा करता है।
4: ऐसा नहीं है।
3: ऐसा नहीं है?
4: नहीं।
3: अच्छा,
4: नियम के अनुसार उनके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि वो कौन है।
3: हाँ।
4: और जो आपने पहले कहा था, जो ज्यादा गंभीर है, उनका कर्तव्य है उसको ठीक करना, नॉट अकॉर्डिंग टू वो क्या रोल प्ले करते हैं। पर देखो, अगर हम थोड़े से भी किसी चीज़ है कि

0: वो बियॉन्ड इन्फ्लुएंस रहकर, पोजीशन के इन्फ्लुएंस से, हर चीज के इन्फ्लुएंस से परे रहकर के राइट डिसीजन ले. और उनका राइट डिसीजन लेने का तरीका है कि दोनों में से ज्यादा गंभीर कौन है, पहले किसको बचाना है.
1: सही बात है.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

किशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी, चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: टॉलरेंस सिर्फ सहना है या फिर समझकर सही एक्शन लेना, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: पावर ऑफ टॉलरेट आप कह रही हैं, सहनशीलता, सहन शक्ति, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम ऐसी चीजें भी सहन कर लेते हैं जो शायद हमें सहन नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ये जानना है कि क्या चीजें सहन कर सकते हैं और क्या चीजें सहन नहीं करनी चाहिए। तो एक दो एग्जांपल देता हूँ। कई बार रूड बिहेवियर होता है, आप रास्ते पे चल रहे हैं, कोई बहुत बुरे तरीके से आपसे या किसी और से बात कर रहा है, ये क्या सहन करना सही बात है?
4: हाँ, सहन करना चाहिए।
3: क्यों ऐसा?
4: क्योंकि वो वैसा व्यवहार कर रहा है जैसा उसके संस्कार है। जैसे आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, कोई गलत गाड़ी चला रहा है, आप क्या करेंगे?
3: बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका है भाई आप सीधे चलो।
4: कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप किसका ध्यान रखेंगे?
3: अपना ध्यान रखेंगे,
4: करेंगे ना ये। अब इसमें आप इसको ये थोड़ा ना कहेंगे कि मैं सहन कर रहा हूँ, आप कहेंगे ये समझदारी है। वो गलत चला रहा है तो भी आप किनारे हो जाएंगे, क्योंकि आपको किसको प्रोटेक्ट करना?
3: अपने आप को।
4: और अगर गाड़ी में आपकी फैमिली बैठी है तो उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको समझदारी कहते हैं। ऐसे कोई रूड बिहेव कर रहा है वो उसके संस्कार है, आपको उनके जैसा रूड होने की जरूरत नहीं है। उसके रूड बिहेवियर का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े और आपको जो करना है आप कर रहे हैं।
3: लेकिन अगर कोई किसी से बुरा बर्ताव कर रहा है आपके सामने, किसी और के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना भी तो सही होना चाहिए।
4: खिलाफ खड़ा होना सही है, लेकिन कैसे खड़े हो रहे
3: हैं? गुस्से से नहीं।
4: किसी भी चीज के लिए आवाज उठाना गलत नहीं।
3: एग्जैक्टली।
4: हाँ। किसी भी चीज के लिए अवेयर करना, एजुकेट करना उसके लिए, लेकिन तरीका तरीका, अगर आप समझो कोई रूड है और आप भी रूड है तो दोनों में क्या फर्क है?
3: कोई फर्क नहीं रहा।
4: वो रूड है और आपके साथ कुछ गलत करता है और आप उस गलत और गलत को सहन करें, लेकिन हम किस चीज को सहन कर रहे हैं, हम उसका जो व्यवहार है उसका अपने मन पर प्रभाव नहीं पड़ने दे रहे। लेकिन अगर हमें कोई पुलिस प्रोटेक्शन लेनी है, हमें कोई कुछ भी बाहर अगर हमें करना है,
3: वो सही है
4: और करना ही चाहिए ना। करना ही चाहिए उसमें। लेकिन हाँ, अगर कोई रूड है और हम उस समय पर, समझो अगर कोई रूड है और हम उसके प्रति बदले की भावना नहीं रखते, हम उसको गलत नहीं बोलते, ये महानता है, ये कोई कमजोरी नहीं है। इसमें क्या कमजोरी? कमजोरी तो तब है जब वो रूड था और आप भी रूड थे।
3: तब तो हम वैसे ही हो गए, हम में फर्क नहीं रहा।
4: हम में कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन किन चीजों को सहन नहीं करना होता? जैसे फिजिकल वायलेंस है,
3: बिल्कुल शांति नहीं है।
4: डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई अब्यूज है, कोई आपको अनएथिकल होने के लिए कहता है। आज आप कहीं पर काम करते हैं और कोई कहता है आपको थोड़ा झूठ बोलना चाहिए, आपको ये रिश्वत लेनी चाहिए, वहाँ पर नहीं आप सहन करते हैं।
3: बिल्कुल सही कह रहे
4: हैं। वहाँ पर आप कहते हैं कि नहीं, भले मेरी नौकरी भी चली जाए लेकिन आई विल नॉट डू दिस। सो यस, ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कहाँ सहन करना है और कहाँ सहन नहीं करना है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डिस्टर्ब होना और अफेक्ट होना, इन दोनों में फर्क क्या है, चलिए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी सहन शक्ति के बारे में कि ये बहुत जरूरी है कि आप उससे डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब होने और अफेक्ट होने में बहुत फर्क होता है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि शायद हमारे मापदंड से टॉलरेंट होना एक इंसान वो है जो कहते हैं कि भैया वो जहर का घूंट पी लेता है और धीरे धीरे वो बहुत कुछ सहन करने लगता है और हम

0: देखते हैं ज्यादातर ऐसे जो इंसान होते हैं ना वो एक दिन लावा की तरफ फूटते हैं, बिल्कुल वोल्केनो की तरफ फूटते हैं और बहुत सारा लावा बाहर निकल के आता है। तो इसमें और जो आप समझा रहे हैं इसमें फर्क क्या है?
1: अगर वो लावा फट करके आ रहा है जो आप कह रहे हैं प्रेशर कुकर की तरह फट गया, मैंने नहीं सहन किया था,
0: मतलब वो बस दबा के रखा था,
1: वेस्ट भी चला, हर्ट भी हुए, केवल एक्सप्रेस नहीं किया, सब कुछ चला, आपके मन के अंदर सब कुछ चला, आपने केवल उसको एक्सप्रेस नहीं किया, आप उसको टॉलरेंस की गिनती में ले ही नहीं सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है मैंने बहुत सहन किया, जब आप कहते हैं मैंने जहर का घुट पिया, आपने सहन नहीं किया, आपको तो वो चीज डिस्टर्ब भी नहीं कर रही है लेकिन जहर की तरह लग रही है। सो दैट इज नॉट, टॉलरेंस इज अ पावर, सी अंडरस्टैंड, वो पावर है। When you are powerful, आप physically powerful है, आपको किसी ने धक्का दिया, कहते मेरे को फील ही नहीं हुआ। आप पावरफुल थे, आप सीढ़ी चढ़ करके गए, क्योंकि आप फिजिकली पावरफुल थे, आपको कुछ भी नहीं हुआ। एक फिजिकली वीक था जो चढ़ नहीं सकता, वो जब तक सीढ़ी चढ़ कर गया वो तो थक गया, उसकी सांस फूल गई, उसकी हेल्थ के ऊपर उसका द वर्ड इज इम्पैक्ट दिखाई दिया। क्योंकि आप फिजिकली वीक थे तो वो इम्पैक्ट दिखाई दिया, आप वीक थे तो आपके ऊपर इम्पैक्ट दिखाई दिया, विच मीन्स यू डोंट हैव टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस पावर का मतलब है आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी किच कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन,

लौटकर आई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। अंदर आया आदेश मान कर, चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में, राधा माधव यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: Morning, only on Mirchi. It's hot. Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हर्ट सिचुएशन में गुस्से से रिएक्ट करना ठीक होता है या गलत, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।

0: अभी हाल फिलहाल की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है कि दिल्ली में एक इंसान थे, वो अपने घर पे थे और एक उनके घर के सामने एक आदमी आया और उसने अपना स्कूटर वहां पार्क कर दिया। तो उन्होंने अपनी खिड़की खोली और बोले, भाई साहब यहाँ से स्कूटर हटा दीजिए प्लीज। तो उसने नहीं हटाई, उसने फिर आग्रह किया कि भाई साहब प्लीज यहाँ से आप स्कूटर हटा लीजिए क्योंकि मेरे घर के सामने की जगह है। तो वो दो बंदे थे स्कूटर पे, वो दोनों आए, उसको चाकू से मार दिया, वहीं पे उसका जान ले ली उनकी, वो मर गए बेचारे। तो अब जब मैंने ये खबर पढ़ी, मैंने कहा ये बंदा प्यार मोहब्बत से उनको बोल रहा था। दूसरा तरीका क्या था कि भैया उसने स्कूटर लगाई, मैं टॉलरेट कर लेता, भाई कोई बात नहीं तुमने स्कूटर लगाई है, एक घंटे दो घंटे तीन घंटे बाद आगे हटाओगे, लेकिन भाई मेरी गाड़ी आएगी कहाँ लगेगी। वो इतना ही कह रहा था कि भैया यहाँ से हटा दो। एक ऐसी स्थिति में हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं, एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे सामने वाला और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हम भी गुस्से में, सामने वाला भी गुस्से में। तो आदर निवेदन प्यार से भी जब सामने को बोला जा रहा है, वो गुस्से से रिएक्ट कर रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपनी गाड़ी हटाने बोल रहे हो, चलो मैं चाकू ही मार देता हूँ। तो यहाँ पे टॉलरेंस का काम कहाँ आया?
1: हम किसी के बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं बाहर। ये जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये बात ठीक है, उन्होंने एक बार प्यार से कहा, फिर दूसरी बार प्यार से कहा, फिर कन्फ्रंटेशन हो गई थी, फिर वो कन्फ्रंटेशन वायलेंस में जाकर के बदल गई थी। यही वो बात चल रही है कि आपने अपने अच्छे तरीके से कहा और फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर लॉ की मदद लेनी चाहिए थी। क्योंकि जब यहाँ पर मैंने वो चीज नहीं करी, मैंने टॉलरेट नहीं, सी दिस इज वेयर समटाइम्स थिंग्स गो टू एक्सट्रीम एंड दे गेट आउट ऑफ हैंड। अगर ये उनका काम हो जाता, वो कहते कि मैंने गुस्सा किया और इन्होंने हटा दिया, तो हम अंदर जस्टिफाई कर लेते हैं कि आराम से तो काम होता,
0: होता
1: नहीं है,
0: हाँ।
1: गुस्से से बोलो तो काम हो जाता है, पर यहाँ बिगड़ भी तो गया ना। जब उन्होंने किया, मैंने भी किया, फिर वो वायलेंट हुए, फिर मैं भी वायलेंट हुआ, फिर वो इतना एक्सट्रीम तक हो गया कि हमने अपनी जान भी खो दी। इसलिए हमें कभी भी अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। हमने प्यार से कहा, हमने आदर से कहा, हमने निवेदन किया, लेकिन उसके बाद हमने भी अगर गुस्सा किया और हमने भी कन्फ्रंट किया और हम भी वायलेंट हो गए, तो फिर वो उसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। इसीलिए अपने संस्कारों को पकड़ करके फिर लॉ पे लॉ की हेल्प लेनी चाहिए।
0: सही कह रही
1: है। मना सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पावर, वी आर टॉकिंग अबाउट इनर पावर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हम हमेशा कहते हैं, एक है जो अंदर चल रहा है
0: और एक है जो बाहर चल रहा
1: है, जो हम बाहर कर रहे हैं।
0: बाहर वाला हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
1: अंदर हम अपनी, जब हम टॉलरेंस की पावर कह रहे हैं, इट इज पावर विच इज इमोशनल पावर, एक आपकी इनर पावर है, विच मीन्स व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, चाहे किसी ने पार्किंग ठीक नहीं करी, किसी ने आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, कोई आपके साथ रूड था, लेकिन आपने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर राइट एक्ट नहीं करते,
0: आपको एक्ट राइट जरूर करना।
1: टॉलरेंस में कई बार क्या, जैसे आपने कहा वीकनेस दिखाई देता है, फिर तो लोग उसको ग्रांटेड ले लेंगे।
0: हाँ, हाँ।
1: आज एक जज भी है, बहुत कामली और स्टेबिलिटी के साथ एक्ट करके कह देता है, पर आपकी ये पनिशमेंट है। पर उसको उसमें उसको चिल्लाने के लिए, चीखने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू।
0: बिल्कुल सही है।
1: क्या आप पनिशमेंट भी विद कंपैशन सुना सकते हो?
0: सही बात, बहुत बढ़िया।
1: क्या आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी कंपैशन के साथ ले सकते हो? बाहर आपको स्ट्रिक्ट होना है, लेकिन अंदर में जो आपका भाव है उसके अंदर प्यार और रहम है, उसमें गुस्सा और नफरत नहीं है, दैट इज टॉलरेंस।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi. It's on.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोशल मीडिया के जमाने में टॉलरेंस और भी मुश्किल क्यों हो गई है, चलिए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो सिस्टर, दिस ब्रिंग्स मी कि आप जो पावर ऑफ टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी पावर है, लेकिन इसमें एक बहुत अहम किरदार आ गया है, वो है सोशल मीडिया का। आज सोशल मीडिया गिव्स द पावर ऑफ एनीबॉडी टू से एनीथिंग टू एनीबॉडी एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो लेट्स से मैंने कुछ लिखा और उसके बाद आपने सामने से कुछ लिख दिया, किसी और ने कुछ लिख दिया, किसी और ने कुछ लिख दिया। अब मैं जो हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने अपने सोच डाले। कभी कभी सोच जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट लिख दिया हो। बहुत सिंपल सी बात मैंने लिखी कि आज मैं सुबह जा रहा था। इस पे भी लोग टिप्पणियां करने लग जाते हैं, भाई तुम्हें क्या जरूरत थी घर से बाहर निकलने की, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। कुछ भी चीज पे किसी का कोई भी कमेंट होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है, एक तो है कि हमें पावर ऑफ टॉलरेंस, जो हमारा जो टॉलरेंस है वो हमको रखना चाहिए, सहन शक्ति वो रखना चाहिए, लेकिन क्या सोशल मीडिया पावर ऑफ टॉलरेंस को खत्म कर रहा है? क्योंकि ये मुझे लगता है ये तो एक एपिडेमिक की तरह हो गया कि इतना इनटॉलरेंस मुझे सोशल मीडिया पे नजर आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि समाज की टॉलरेंस शक्ति तो खत्म ही हो गई है।
4: सोशल मीडिया पावर ऑफ टॉलरेंस खत्म नहीं कर सकता क्योंकि वो तो विद इन है। पर सोशल मीडिया अब वो एक मीडियम बन गया कि आप चेक कर सकते हैं आप कितने पावरफुल हैं।
3: अच्छा।
4: क्योंकि पहले बहुत क्लोज नेटवर्क था।
3: हाँ।
4: कोई भी आपको कुछ बोलने से पहले सोचता था। सोशल
3: हाँ।
4: मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया,
3: अनोनिमस हो गया, कोई कुछ भी बोल सकता है,
4: कोई कुछ भी बोल सकता है, ट्रोल कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, आप कितनों को रोकेंगे? यहाँ तो दो चार थे सोच करके बोलते थे, वहाँ तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर आपके पास अभी पावर ऑफ टॉलरेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे? इम्पैक्ट पड़ेगा,
3: इम्पैक्ट होंगे, परेशान होंगे।
4: दैट इज वाई पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया, और अगर अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो जल्दी जल्दी इम्पैक्ट हो जाता है।
3: वो हमेशा परेशान ही रहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: पर वो कोई उनको परेशान कर नहीं रहा है,
3: वो सोच सोच के हो रहे हैं,
4: वो सोच सोच के, क्योंकि अब तो और ओपन दायरा हो गया ना। पहले कोई कोई पब्लिक फिगर होता था,
3: अब सारे हैं,
4: अब सारे के सारे पब्लिक फिगर है। पहले किसी किसी की लाइफ पब्लिक होती थी, अभी जरूरत नहीं है तो भी सबने अपनी लाइफ को पब्लिक कर दिया है। तो जब आप अपनी लाइफ को पब्लिक करेंगे तो लोगों का ओपिनियन तो होगा।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: कभी तो हंसाए।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
5: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
11: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हम एक इंटॉलरेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं? आइए इस सच पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आप कह रही हैं पावर टू टॉलरेट, उसके बारे में बात हो रही है। अब आज की जो दुनिया है, इट्स एन इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट वर्ल्ड। आसपास जहां भी देखिए, आपको सिर्फ आपत्तियां, प्रॉब्लम्स और सामने वाले की तरफ से ज्यादा नॉन कंप्लायंस, नॉन हेल्पफुल, नॉन कोऑपरेशन एटीट्यूड है। सहन शक्ति की प्राप्ति जो है, उसमें इस माहौल में कैसे उसको यूज किया जाए?

0: जब सामने वाला आपसे इतना कोऑपरेट नहीं करता।
1: सहन शक्ति हमें यूज करनी है
0: जी।
1: सामने वाला जो कर रहा है उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना
0: जी।
1: सामने वाले हर एक अलग अलग होते हैं, कोई बहुत हेल्पफुल भी होगा, कोई नहीं भी होगा, कोई बहुत सपोर्टिव भी होगा, कोई नहीं भी सपोर्टिव होगा। लेकिन ये देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की, वो मेरा संस्कार है
0: जी।
1: इट हैज नथिंग टू डू कि आउटसाइड क्या हो रहा है।
0: राइट।
1: ये जो बार बार हम कहते हैं ना, पहले ऐसा था अब ऐसा है, जैसे एक फूल होता है, फूल का काम है खुशबू देना
0: जी।
1: चाहे वो में हो चाहे वो कीचड़ में हो
0: जी।
1: उसका जो संस्कार है वो छोड़ता नहीं है
0: जी।
1: ऐसे अगर सहन करना मेरा संस्कार है, वो
0: तो
1: एक शक्ति है। हाँ, फिर उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने समाज कैसा है या व्यक्ति कैसा है, वो चीज पर वो चीज आधारित नहीं होती। संस्कार ऐसा नहीं है, ये ऐसा है तो यूज करे, ऐसा है तो नहीं। वो मेरी इनेट नेचर है, मेरी पर्सनैलिटी है।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओकरी रोड, इज़िलन।
3: Worried about how your child will stay
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Are your grocery bills giving you sticker shock every week? Are you cutting down on travel because of high gas prices? And why are we at war with Iran and Canada? Trump is making such a mess of everything for the common man while enriching himself and his billionaire friends. Let's vote for all Democrats this November so we can have a Congress that actually does its job. We don't need another 2 years of daily bad news. Be sure to vote for Democrats.
6: Paid for by Desi Blue, desiblue.org. Not authorized by any candidate or candidates committee.
7: Visit Krishna.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन

0: Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो हम अपना एक्शन कैसे चूज करें, चलिए समझने की कोशिश करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। फिजिक्स में हम लॉ में पढ़ते थे, जब सामने वाला मुझे इनटॉलरेंस के साथ ट्रीट कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो मुझ पे ही पड़ेगा ना।
4: जब हम कहते थे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो हमारे एक्शन की बात चल रही है
3: जी,
4: कि आप जो करेंगे उसका इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन आएगा
3: सामने से।
4: सोच समझ के करना है,
3: ठीक है। तो ये
4: सामने वाला गलत कर रहे थे,
3: सामने वाले पर भी तो इक्वली एप्लीकेबल है ना, कि आप जो करेंगे वो आपको लौट के आएगा,
4: उसको लौट करके आएगा ना, उसको लौट करके आएगा। आपने सही किया तो आपके पास सही लौट कर आएगा, उसने गलत किया तो उसके पास गलत लौट करके आएगा। इसीलिए कॉपी नहीं कर, उसने ऐसा बोला ना इसलिए मैंने ऐसे बोला
3: जी।
4: मैं तो बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा था, मैं तो बहुत शांति से चल रहा था, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। हम कॉपी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर भाग्य भी कॉपी हो जाएगा, फिर जो उनका भाग्य होगा वो आपका होगा।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलन।
3: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
2: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Hill.
8: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Kichi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Negative thoughts आते क्यों हैं और उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, एक सवाल आया है। कहते हैं कि नेगेटिव थॉट इतने आते हैं कि मन करता है कि मर जाऊं, लेकिन मेरी एक लड़की है उसके लिए मैं जी रही हूं। आंखों के सामने सब कुछ बुरा दिखाई देता है, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, भगवान के प्रति भी बुरा दिख जाता है, बहुत बुरा लगता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, क्या करूं?
4: बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स होना ऐसे हो जाता है जैसे बुखार है, 100 भी होता है, 102 भी होता है, 104 भी होता है। जब 104 बुखार होता है तब आप घर में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आप घर में ही करते रहे तो कोई कहता है अभी आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको एक हेल्प सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है।
3: बिल्कुल,
4: ऐसे अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप घर में नहीं बैठे रहे, आप ये नहीं सोचे सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करें, ये फिर बढ़ जाता है। तो इसमें दो चीजों का आप सपोर्ट ले सकते हैं, पहला मेडिकेशन, थेरेपी है। जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि कई बार थॉट आता है मर जाऊं, ये एक्सट्रीम का साइन होता है। आपको जब जीने की आश खत्म हो जाती है और आप ही जस्ट होल्डिंग ऑन टू दैट थ्रेड कि मेरी बेटी है, विच इज अ गुड थिंग, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम केस है। तो इसमें मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों का सपोर्ट लें।
3: बहुत बढ़िया,
4: मेडिकेशन भी शुरू कर सकते हैं और मेडिटेशन। देखो मेडिकेशन जो है ये भी हर एक को समझने जरूरी है, कोई दवाई मन तक नहीं पहुंच सकती है।
3: सही बात
4: है ही नहीं, आप वो मन ऐसी चीज, फिजिकल चीज तो है नहीं, कोई दवाई मन को ठीक नहीं कर सकती। लेकिन मन जब बहुत नेगेटिव सोचता है तो उससे बॉडी के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसको सपोर्ट करने में वो मेडिसिन जरूर हेल्प करती है। आप सिर्फ मेडिसिन लेंगे वो सपोर्ट सिस्टम है, मन को अगर आपको शक्तिशाली बनाना है, व्यर्थ को समर्थ करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, उसके लिए तो आपको स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा।
3: तो मेडिटेशन वो चीज है जो आपके मन के हर कण कण में घुस जाती है, इसका जरूर आप फायदा

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: तुम्हारी मॉर्निंग्स का वो नोटिफिकेशन जिसका तुमको इंतजार होता है, दैट्स मी। बोले तो प्रिसिला आ चुकी है मिर्ची मॉर्निंग्स लेकर, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स हैज ऑफिशियली बिगन। अभी कॉफी हो गई है, कम्यूट शुरू हो गया है, बच्चों का लंच पैक हो गया है, और अगर तुम भी अपने ब्लैंकेट से बाहर अभी तक नहीं निकले हो तो बस एटलीस्ट फोन को ऑफिस रेडी तो कर लो यार, क्योंकि अटेंडेंस तो तुम्हारी लग ही चुकी है इस शो के लिए। आज का फंडा काफी सिंपल है, थोड़ी सी बॉलीवुड की बातें करने वाले हैं, थोड़ा सा दुनिया का ड्रामा देखेंगे, कुछ ऐसी हटके स्टोरीज मैं तुम्हें बताने वाली हूं, और कुछ थोड़ा सा देसी ह्यूमर, एंड साथ साथ में आने वाले हैं बॉलीवुड के बैंगर्स। तो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक नवरात्रि स्पेशल कॉन्टेस्ट भी है, उसके बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगी। तब तक तो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, और व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, मुझे सुनते रहो, वॉल्यूम फुल करो, स्माइल ब्यूटिफुल करो, और स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RawJewels.com। 9 nights, one divine spirit.
1: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
0: Join daily Garva, October 11th to 19th at 7 p.m.
1: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharad Purnima Garba on the 25th.
0: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: रंगीला तारा रंग
6: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
7: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
0: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
10: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री।

0: रोड इजलन न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर कंडीशंस अप्लाई।
1: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
2: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
2: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903364744, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप सुनने वाले हो कि आज के दिन दुनिया में क्या क्या हुआ था। 54 एडी में रोमन एम्परर क्लाउडस की डेथ हुई थी और नेरो बना था एम्परर। फिर 1307 में फ्रांस में हंड्रेड्स ऑफ नाइट्स टेम्पलर अरेस्ट हुए थे। 1773 में एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मेसिए डिस्कवर्ड द व्हर्लपूल गैलेक्सी। 1792 में वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की फाउंडेशन रखी गई थी। 1903 में बॉस्टन अमेरिकन्स वन बेसबॉल्स फर्स्ट मॉडर्न वर्ल्ड सीरीज। 1943 में इटली स्विच्ड साइड्स इन वर्ल्ड वॉर टू। टॉक अबाउट जियोपॉलिटिकल प्लॉट ट्विस्ट। और फास्ट फॉरवर्ड करें 2010 में तो चिली के 33-69 डेज अंडरग्राउंड रहने के बाद सेफली बाहर आ गए थे। 2016 में बॉब डिलन won the Nobel Prize in Literature। और 2024 में SpaceX got a returning rocket booster with giant robotic arms। हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग थी आज के दिन की। तुम्हें कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग लगी मुझे बताओ। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। अभी मिर्ची दर बैंगर्स चलाने का टाइम है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: मिल्की मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अभी मेरे साथ में हमारी अगली कंटेस्टेंट है. लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है. हेलो.
2: हाय, माय नेम इज यास्मिन.
1: हाय यास्मिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम.
2: थैंक यू.
1: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है?
2: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम. सो या, एवरीबॉडीज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन.
1: ओह, दैट्स स्वीट. सो इंडिया में कहां से हुआ?
2: इंडिया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे.
1: बॉम्बे, ऑलराइट. तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है. विरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का हाई ये कॉन्टेस्ट चल रहा है. मेरा सवाल यास्मिन से ये है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है? फटाफट से आंसर बताइए.
2: द गंगा रिवर.
1: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशन. और आप अगले राउंड में मूव करती हैं.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
2: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
3: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
4: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में

0: ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज
1: शादी शॉप
0: ओक ट्री रोड इज़लिन
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस
2: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस कृष्णा ज्वेलर्स लेडीज फर्स्ट चॉइस
4: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है
5: अरे माँ अभी भेजता हूँ टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में
4: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट
6: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069
7: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम साथ में पिज्जा पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057
8: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated. And when we are on it, it creaks so loud, ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
4: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है
5: अरे माँ अभी भेजता हूँ टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में
4: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट
6: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069
11: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
12: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो Red Label के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट. Red Label की हर एक रोशनी वाली चुस्की. दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा
13: तेरा क्या होगा कालिया
14: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
13: अब मिर्ची खा
15: रेडियो मिर्ची It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है।

0: Only on Mirchi. It's hot.
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। Celebrate this Diwali with RajJewels.com.
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, California.
5: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
6: Beta, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
9: 2108069।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
10: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
16: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
17: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
16: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
18: Listener MI, back to back gana sunega.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and it's time to get updated on what's happening around the world. सबसे पहले एट अ डोनाल्ड ट्रंप रैली इन ओहायो प्रोटेस्टर वॉज पंच्ड बाय अ रैली गोअर एंड एस्कॉर्टेड आउट। ट्रंप देन मॉक्ड द प्रोटेस्टर्स अपीयरेंस। नंबर टू पर ऑस्ट्रेलिया से एक हार्ट ब्रेकिंग केस है फ्रॉम एडिलेड। अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हु वॉज 20 ईयर्स ओल्ड सामिया मलिक वॉज किल्ड आफ्टर बींग स्ट्रक बाय व्हीलिंग ऑन द रोड इन व्हाट अपीयर्ड टू बी अ प्रेयर। द ड्राइवर रिसीव्ड अ सस्पेंडेड सेंटेंस मीनिंग ही वोंट सर्व द प्रिजन टर्म इफ ही मीट्स द कंडीशंस। एंड लास्टली फ्रॉम इंडिया, Kolkata, Durga Puja preparations are bringing a colorful makeover to city roads, bridges and crossings. Pink, orange, yellow and traditional Alpona designs, Kolkata's roads are getting festive ready, but drivers ka focus decoration se zyada destination par rahe. And that's it, your Mirchi Hour ka 3 ke liye. Main hoon Prisila, tumhare saath mein on Mirchi Mornings. Stick around, aane wale hai Mirchi Dar Bangers, and also follow me Insta or X par, mera handle hai Mirchi Pris. WhatsApp ka number 90336472444. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Kabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Mirchi, murga.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर, आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर, ये दो है, एक लाल है, एक हरा, इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट
1: कैंची ले ली सर।
2: इमीडिएट तो कर दिया लेकिन सिचुएशन है।
1: आसपास कोई भी नहीं है।
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है, हिलने का टाइम
1: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
2: ठीक है
1: बताइए। हरा काट के देख। धीरे से।
2: 1, 2, 3 Congratulations.
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है।
2: हाँ।
1: तो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद राजजूल्स.com।

0: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
1: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
0: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
2: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
7: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viraniejewelers.com।
9: क्लम्सी हो,
10: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन।
11: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए जोहो वन ले आओ। जोहो वन इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट, यू कैन रन योर एंटायर बिजनेस, सेल्स मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग ऑपरेशंस या HR। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, जोहो वन। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/1।
12: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
13: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
14: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
15: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
18: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
19: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
18: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
19: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
18: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
12: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
13: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
15: मिर्ची फ्रेश माल।
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट। मिर्ची 9 लाख का हार, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: नवरात्रि स्पेशल मिर्ची पर चल रहा एक कॉन्टेस्ट जिसका नाम है मिर्ची 9 लाख का हार, इट्स प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। और इसमें हमारे साथ हमारे अगले कंटेस्टेंट आ चुके हैं, लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है। हेलो,
3: हाय प्रिसिला।
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: माय नेम इज गौरव।
2: हाय गौरव, हाउ आर यू डूइंग?
3: I'm doing well, thank you. How are you?
2: I'm great, great. Happy Navratri to you.
3: Well, happy Navratri to you too.
2: Thank you so much. So, ये बताइए आपका Navratri कैसा जा रहा है अभी तक?
3: Navratri, I'm going to fast for 9 days, as I've been doing for many years now. And on the 10th, I'll visit the temple, breakfast, be with my family. That's how it goes.
2: अब मैं जल्दी से आपसे एक सवाल पूछने वाले हूँ और उसका जवाब आपको फटाफट से देना है. And उसके बाद let's see if you can move on to the next round. So are you ready?
3: I am.
2: All right. Farah, what's up? What is India's national bird?
3: Peacock.
2: Peacock. That's the correct answer. Congratulations. Ab next round mein move on ho chuke hai. Thank you so much, Gaurav.
3: Thank you.
2: So I wish aapke Navratri bahut hi zyada shubh ho and you have a great festive season. Thank you so much for participating.
1: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers.

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: मेक योर चाइल्ड्स पार्टी अनफॉरगेटेबल दिस ईयर, कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्लाइम टू क्राफ्ट्स, ऑल डिजाइंड अराउंड योर चाइल्ड्स एज एंड थीम, एंड ऑफ कोर्स पिज्जा पॉपकॉर्न एंड अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057। रंगीला तारा रंग नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
6: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
11: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
12: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
13: Don't worry. I'm contacting 7 days pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
12: Wait, they can see us on Sunday?
13: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Is Diwali, jab apnon ke sang roshni aur pyar ka mahol ho, to Red Label ke swad aur kadakpan se ghule har ek moment. Red Label ki har ek roshni wali chuski, दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की, खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।

0: अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
1: अरे कहना क्या चाहते हो?
2: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
0: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
3: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka haar. Presented by Virani Jewelers.
1: Virani Jewelers presents Mirchi no laka haar chal raha hai. Agli contestant jo hai wo mere saath line par hai. Let's find out who that is. Hello.
2: Hi.
1: Hi, what's your name?
2: Sheetal.
1: Hi Sheetal, how are you?
2: Good. How are you?
1: Hi, I'm good. Thank you so much. Happy Navratri to you.
2: Same to you.
1: Alright, Sheetal, main aapse ek sawal puchne wali hu aur uska jawab dene par depend karega ki aap agle round mein jaate hain ki nahi jaate. Alright, mera sawal agle round ke liye aapse hai कि कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है. फटाफट से आंसर बताइए.
2: सिटी ऑफ द ड्रीम्स बॉम्बे.
1: बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. एंड बॉम्बे यानी कि मुंबई इज ऑल्सो द सिटी ऑफ ड्रीम्स इन इंडिया. थैंक यू सो मच शीतल फॉर पार्टिसिपेटिंग. कंग्रेचुलेशंस, आप अगले राउंड में पहुंच गए हैं.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
13: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
11: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
15: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: प्री बुक योर ज्वेलरी एट Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit

0: Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. To grab this offer, conditions apply.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. We are almost close to the end of this hour and अब आने वाला है Gold Rate Update on Mirchi Morning.
2: Rajgirls.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,190. $4,190 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. जब हम डांडिया और गरबा को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं लिटिल इंडिया ओकरी रोड पर, आ जाइए राज ज्वेल्स के साथ ओपन एयर गरबा 15th and 16th October को 7 to 10 PM सेलिब्रेट करने के लिए. इट्स फ्री फॉर ऑल फॉर द कम्युनिटी. आइए राज ज्वेल्स और ओकरी के साथ गरबा सेलिब्रेट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड दैट वाज द गोल्ड रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244. अब टाइम है मिर्ची तार बैंगर्स का. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे.
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनते हैं अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले इलॉन मस्क सेज ही लुक्स अ लिटिल एशियन व्हाइल टॉकिंग अबाउट हिज चाइनीज लुक अलाइक एट एन एक्स इवेंट। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और मस्क के हिसाब से कोई हमशक्ल मिलना सरप्राइजिंग नहीं है। ही इवन जोक्ड अबाउट इनवाइटिंग हिम ऑन स्टेज फॉर अ डांस। नंबर टू पर ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर व्हाइट जूनियर का रोल प्ले करने वाले एक्टर आरजे मिटे हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 34। ही वाज आल्सो अ पैशनेट डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हु हेल्प्ड ब्रिंग रिप्रेजेंटेशन टू टेलीविजन। आवर थॉट्स आर विद हिज लव्ड वंस। एंड लास्टली, आर्कनसा में जैक पियर आर्डन को डायमंड हंटिंग के दौरान मिला एक रेयर 6.03 कैरेट येलो डायमंड, जिसे उन्होंने अमेरिकन ड्रीम डायमंड नाम दिया है। और ये डिस्कवरी टिकटॉक लाइव स्ट्रीम पर हुई है। 13 years ऑफ सर्चिंग प्रूफ कि कभी कभी ट्रेजर जो है लिटरली मिट्टी में ही होता है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. Na virtuala murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया
1: दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये। हाँ,
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा हूं।
1: भैया दो चार नौ का क्या मतलब है, एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई तो भाई, अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: है तो मेरा
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन।
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, ठीक है
2: मैं निकलवा लूंगा, और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ, सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
5: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
4: Wait, they can see us on Sunday?
5: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं, पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं, फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं, रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।

0: इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka har. Presented by Virani Jewelers.
1: नवरात्रि का माहौल चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब पता करते हैं हमारे साथ और कौन है जो फोन लाइन पर है. हेलो.
2: हाय प्रिसला, गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, दिस इज अनु.
1: हाय अनु, क्या चल रहा है नवरात्रि में?
2: कुछ नहीं, प्रिपरेशन चल रहा है. आई हैव ट्विन गर्ल्स हु आर 2 इयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड, सो आई एम प्लानिंग टू ड्रेस देम अप एंड देन लाइक हैव फन.

0: Concord, California.
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
3: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
4: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
6: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
5: मैत्री ब्रिंग्स यू थाक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
7: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
10: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
15: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
16: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
17: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
14: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all in one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
10: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
18: Tera kya hoga Kalya? Ab mirchi ka.
19: Radio Mirchi. It's hot.

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka har. Presented by Virani Jewelers.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अभी मेरे साथ में हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं. लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है. हेलो.
2: हाय, माय नेम इज यास्मिन.
1: हाय यास्मिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम.
2: थैंक यू.
1: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है.
2: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम. सो या एवरीबॉडीज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर. सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन.
1: ओह, दैट्स स्वीट. सो इंडिया में कहां हुआ?
2: इंडिया. आई एम फ्रॉम बॉम्बे.
1: बॉम्बे. ऑलराइट, तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है. विगारी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हाँ ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है. मेरा सवाल यास्मिन से ये है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है. फटाफट से आंसर बताइए.
2: द गंगा रिवर.
1: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशन. और आप अगले राउंड में मूव करती है.
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2

0: रोकी रोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द 3rd एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर। या पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay।
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also, enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
9: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए
11: एवेन्यू इज़िलिन।
13: मुझे लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवा,
14: उसको मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
15: अरे कहना क्या चाहते हो,
16: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
14: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
17: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, meri pyari pyari Desi family, it's time for me to wrap up another dhamakedar Mirchi Mornings. Now, whether you're driving to work, dropping the kids off, or pretending ki aaj bhi full on energy hai tumhare andar, I hope maine tumhari mornings mein thoda sa music aur masti aur mirchi add kiya hoga, tumme thoda sa smile karaya hoga. Aur waise festive season mein apne aap hi thodi si khushi khushi rehti hai life mein. Mujhe na ghar ki badi yaad aati hai. Aur ghar ki jab yaad aati hai, to bring these desi flavors straight to your pardesi kitchen with Nanak Foods. From soft syrupy gulab jamun and creamy rasmalai to rich ghee, for all those festive recipes and crispy स्पाइसी आलू टिक्की यार मुझे टिक्की चाट की क्रेविंग हो रही है कसम से. नानक फूड्स लेकर आए ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर्स टू योर होम अवे फ्रॉम होम, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट यार, फेस्टिवल ना कभी पूरा नहीं होता जब तक हम देसी खालिस फ्लेवर्स ना खाएं, उस तरह का फूड ना खाएं जो हमारे घर पर बनता है. और नानक फूड्स जो है वो स्पेशलाइज करते हैं इसी चीज में. और वैसे भी हम देसी लोगों का क्या है, मिठाई खाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, ओकेजन चाहिए होता है. एंड इसी बात पर मेरे मुंह में पा गया है, मुझे बहुत जोर की क्रेविंग हो रही है. आई एम गोइंग टू गेट सम मिठाई फॉर माई सेल्फ. मैं हूँ प्रिसला, साइन ऑफ करना पड़ेगा मुझे अभी के भी बिकॉज मैं बोल नहीं पाऊंगी. कीप द फेस्टिव वाइब्स अलाइव, कीप द मिर्ची वाइब्स अलाइव, स्प्रेड सम प्यार एंड फेस्टिविटीज तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारे लव्ड वंस है उनके साथ में. और नहीं भी जानते हो तब भी मिठाई खाने में खिलाने में क्या ही फर्क पड़ता है. अभी के लिए मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033647 2444. Stay tuned and stay hot.

0: कुछ शो सिर्फ शोज नहीं होते, वो पूरी जनरेशन की मेमोरी बन जाते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस हुए हैं इन द शो कॉफी विद करण इज वन ऑफ देम। 2004 में शुरू हुआ था ये शो और देखते ही देखते 8 सीजन्स, 22 साल और 161 एपिसोड्स का सफर तय कर गया, जहां करण जौहर के काउच पर सेलिब्रिटीज आए, कॉफी के साथ कन्फेशंस हुए, रैपिड फायर राउंड्स में सीक्रेट्स निकले और कुछ ऐसे मोमेंट्स मिले जो लिटरली पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। और अब जब करण जौहर ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीजन 8 इज गोइंग टू बी द लास्ट ब्रू ऑफ द शो, तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि यार हमारी जनरेशन ने ना इस शो पे सिर्फ सेलिब्रिटीज को कॉफी पे बात करते हुए नहीं देखा, हमने उनकी पर्सनालिटीज, उनकी फ्रेंडशिप्स, कंट्रोवर्सीज और वल्नरेबिलिटीज को भी उस काउच पर अनफोल्ड होते देखा है। 22 सालों तक कॉफी विद करण ने बॉलीवुड को सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया, उस कहानी का एक हिस्सा बन गया। और शायद इसीलिए इसका लास्ट एपिसोड सिर्फ एक शो का फिनाले नहीं, एक एरा का गुड बाय लगेगा। वैसे ऑलरेडी इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड 14th ऑफ अक्टूबर से इट इज गोना स्ट्रीम ऑन जियो हॉटस्टार, जब करण जौहर की ये वाली लेगेसी विल कम टू एन एंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैंने क्यों आ जाऊं, ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
1: ऐसा है इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो थोड़े मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर

0: ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन्स ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
2: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स। दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
0: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
2: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग एरियाज फॉर द लास्ट 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
3: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
4: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देख के पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले 2 साल पिछले 2 साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
7: Paid for by Desi Blue, DesiBlue.org, not authorized by any candidate or candidates committee.
8: No!
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स इन पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244 दैट्स 9033 मिर्ची और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हाँ जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहाँ अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब इन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: नवरात्रि का माहौल चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब पता करते हैं हमारे साथ और कौन है जो फोन लाइन पर है। हेलो,
2: हाय प्रिसला, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, दिस इज अनु।
1: हाय अनु, क्या चल रहा है नवरात्रि में?
2: कुछ नहीं, प्रिपरेशन चल रहा है। आई हैव ट्विन गर्ल्स हु आर 2 इयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड, सो आई एम प्लानिंग टू ड्रेस देम अप एंड देन लाइक हैव फन, डू सम डांसिंग विद देम।
1: ओह, दैट्स सो क्यूट। तो चलिए जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आपको फटाफट से बिल्कुल क्विकली आंसर करना है।
2: श्योर,
1: टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड, जल्दी से मुझे बताइए व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी?
2: जयपुर।
1: ऑलराइट, दैट्स द करेक्ट आंसर। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keep showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Italy?
8: Oh, all the stylish furniture is from Ital Mode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
7: What? Ital Mode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo Ital Mode Furniture pe. Agli party hamare ghar pe.
9: Italmod Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodfurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
13: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
12: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
13: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
16: नवरात एक स्पिरिट
17: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
16: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी।
17: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट गायत्री सेंटर.org टुडे।

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही थी। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, लगाम लगाइए उसको, जरा पॉइंट पे आइए। बेसिकली यहाँ पे आपको ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है राजा जी। हेलो सर, कैसे हैं आप?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ, अब आपसे बात करके और अच्छा।
0: ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ चलिए और अच्छा करते हैं आपकी वाइब को। जजंतरम अमंतरम के लीड एक्टर कौन थे?
3: जावेद जाफरी।
0: जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
3: धमाल।
0: क्या बात, धमाल में मानव का भाई कौन है?
3: मानव का भाई अरशद वारसी।
0: क्या बात, अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का, मतलब करने का ये बोलते हैं?
3: मुन्ना भाई।
0: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
3: खलनायक।
0: गाना याद किया था ना?
3: हाँ, वही पहले वही आता है।
0: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
3: ये जवानी है दीवानी।
0: ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
3: कल की
0: ओके, पता है। कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
3: बैग का नाम बैगवती होता है। मूवी याद नहीं आ रही।
0: कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और आपको बनाएंगे हमारे आज के पहले
1: मिर्ची फिल्म ची।
3: थैंक यू श्रुति।
0: तो भाई अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल की मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके आपको अपना नंबर भेजना होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्की ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर,

0: सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
2: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
3: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
1: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
5: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा नौल चेन्स।
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
5: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
8: Yeah, meethi mirchi, brighten up your day, we will find a way on meethi mirchi, aha.
9: खेलो मगर प्यार से।
10: श्रुति श्रुति
11: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
9: मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है और फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमने रजत जी से शुरू किया था, बट ही गॉट स्टक एट पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है राहुल। तैयार है आप?
12: जी जी जी।
9: ओके, सो रजत इस सवाल पे अटके थे कि कल्की की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है। ZNMD में पिंक फोन कौन चलाता है?
12: ऋतिक रोशन।
9: लड्डू रायचंद किस फिल्म में बने हैं?
12: कभी खुशी कभी गम।
9: काफी म्यूजिकल हैं आप। कभी खुशी कभी गम में कह दिया, बस कह दिया कौन बोलता है?
12: अमिताभ जी।
9: अमिताभ बच्चन गुरुकुल के सड़ू प्रिंसिपल किस फिल्म में बने हैं?
12: मोहब्बतें
9: में लोगों के आगे पीछे किसकी आत्मा डांस करती है?
12: ऐश्वर्या राय।
9: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो हॉट शायरा बनी है?
12: ए दिल है मुश्किल
9: में अलीजे से एक तरफा प्यार किसको होता है?
12: रणबीर कपूर
9: किस फिल्म में पापा? फिल्म में अबरार कौन है?
12: बॉबी देओल।
9: बॉबी देओल की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग की बात होती है?
12: अजनबी।
9: क्या बात, अजनबी में बॉबी की वाइफ कौन है?
12: करीना कपूर
9: की किस फिल्म में रोबोट्स हैं?
12: रावण।
9: हाँ जी, रावण में गेम डिजाइनर कौन है?
12: शाहरुख खान।
9: कैदी नंबर 786 किस फिल्म में बने हैं?
12: वीर जारा
9: में उनकी डिफेंस लॉयर कौन है?
12: रानी मुखर्जी
9: की किस फिल्म में उनके हस्बैंड रेसर होते हैं?
12: तारा रम्पम।
9: आपने भी गेम एकदम तारा रम्पम खेला है। तो चलिए आपको भी डिक्लेयर करते हैं हमारे आज के दूसरे
13: मिर्ची फिल्म जी।
9: बाकी अगर आप में से कोई इस गेम का हिस्सा बनना चाहता है तो मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डीएम करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
14: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

Southside. Yeah.

0: भाई एक्सट्रीम्स के अलावा भी एक जोन होता है
1: श्रुति। मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत कम फिल्मों ने एक्सप्लोर किया है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और हम बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर्स को अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखते आए हैं, राइट? या तो वो बहुत बेचारी सी है या फिर इतनी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन है कि भाई उसमें कोई वीकनेस ही नहीं है। लेकिन कुछ फिल्म ऐसी है जहाँ वुमन को सिर्फ इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें इंसान बनाया गया। वो करियर को लेकर कंफ्यूज हो सकती हैं, घर से इरिटेटेड हो सकती हैं, गलत डिसीजंस ले सकती हैं, रिलेशनशिप्स में मेस कर सकती हैं, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर सकती हैं, या बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट साल 2015 में आई, नंबर दो पे वील टॉक अबाउट साल 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में, नंबर तीन पे हम बात करेंगे 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, नंबर चार पे साल 2024 में आई फिल्म लापता लेडीज से दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में, और नंबर पांच पे साल 2025 में आई फिल्म मिसेस से सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर रिचा के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद पीकू, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार और इसे लिखा है जूही चतुर्वेदी ने। एंड यू नो ये फिल्म शायद उन रेयर फिल्मों में से है जहां एक वुमन की लाइफ को किसी लव स्टोरी के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया है। पीकू एक आर्किटेक्ट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, रिलेशनशिप्स हैं उसकी लाइफ में, एसईएक्स और मैरिज को लेकर उसके अपने ओपिनियंस हैं, और साथ में एक ऐसे फादर हैं जो लिटरली उसके पेशेंस का डेली टेस्ट लेते हैं। डायरेक्टर सुजीत सरकार और राइटर जूही चतुर्वेदी ने पीकू को आइडियल डॉटर बनाने की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स इरिटेबल, समटाइम्स सेल्फिश बट डीपली लविंग वुमन बनाया है। एंड दीपा पादुकोण एज पीकू ग्लैमरस हीरोइन कम एक रियल दिल्ली वुमन ज्यादा लगती है। वेल ऐसे ही बाकी के चार और कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगी बट इन अ वाइल, अभी के लिए एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Jacek Milczy.
1: Puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Nawiedwala burka.
0: Milczy, burka.
2: Hello?
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट.
2: पीछे हो गया
3: फिर कटेगा कैसे?
2: भारी सामान
3: तो नहीं है सर.
2: रंग बता.
3: एक लाल एक हरा.
2: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
3: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. लेकिन सिचुएशन है.
2: आस
3: पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
2: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
3: बिल्कुल
2: फटना नहीं चाहिए. आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
3: ठीक है बताइए.
2: हरा काट के देख. धीरे से.
3: 3 Congratulations.
2: ताली बज रही है? कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा है. हाँ. तो
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: Blade के साथ only on Mirchi. It's hot. Yep,
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
2: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
3: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
4: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
2: बिजनेस NJ presents दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
4: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com.
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy or
9: confusion ही confusion.
2: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: गाला तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग
2: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
11: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
4: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: एक नारी या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो जनरली हमें ऐसे ही पिक्चराइजेशंस मिलते हैं इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ आर मूवीज। अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखा है हमने उन्हें, या तो बेचारी होती हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिनके पास कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रही हूं जिनमें एक्चुअल में औरतों को समझा गया, उनके फ्लॉज को भी उतना ही एक्नॉलेज किया गया जितने उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स को। इन द लिस्ट सबसे पहले हमने बात की पीकू के बारे में, अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश इंग्लिश से श्रीदेवी मैम के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। ये फिल्म गौरी शिंदे ने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और ये 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें शशि गोडबोले एक होममेकर, एक माँ, एक वाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला हैं, जिसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार घर संभालना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस फिल्म की ब्रिलियंस ये है कि शशि कोई रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। वो घर के लिए लड्डू बनाती हैं, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उसी फैमिली के सामने इनसिक्योर भी फील करती हैं। सो डायरेक्टर गौरी शिंदे ने शशि की जर्नी को लैंग्वेज सीखने से ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने की जर्नी बना दी और श्रीदेवी मैम ने बिना ओवर एक्टिंग के एक ऐसी वुमन को प्ले किया जिसके अंदर का कॉन्फिडेंस हम स्लोली स्क्रीन पर वापस आता देखते हैं। इन शॉर्ट, इंग्लिश विंग्लिश रिमाइंड्स अस कि कभी कभी दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले खुद को इम्प्रेस करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन नंबर

0: स्क्रीन पे लेट्स टॉक अबाउट 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रोहेना गेरा ने, जहां एक डोमेस्टिक वर्कर रत्ना अश्विन यानी कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान के यहाँ काम करती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये दोनों प्यार कर सकते हैं। फिल्म पूछती है कि भाई क्या सोसाइटी उन्हें इक्वल समझेगी। एंड डायरेक्टर रोहेना ने रत्ना को सिर्फ एक मेड या लव इंटरेस्ट नहीं बनाया, उसके अपने एम्बिशंस भी दिखाए हैं। वो टेलर बनना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ एक्टर तिलोत्तमा शोमे इज, उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड है कि रत्ना को देखते वक्त लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी रियल वुमन की लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी भी आपकी वॉचलिस्ट में नहीं है, देन प्लीज के साथ और बाकी की दो फिल्मों को अभी से कुछ ही देर में वापस डिस्कस करूंगी। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा।

0: presented by Virani Jewelers.
1: मिर्ची मॉर्निंग सर, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अभी मेरे साथ में हमारी अगली कंटेस्टेंट हैं. लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है. हेलो.
2: हाय, माय नेम इज यास्मिन.
1: हाय यास्मिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम.
2: थैंक यू.
1: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है.
2: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम. सो या, एवरीबॉडी इज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन.
1: ओह, दैट्स स्वीट. सो इंडिया में कहां से हुआ.
2: इंडिया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे.
1: बॉम्बे, ऑलराइट. तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है. विगानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का. हाँ, ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है. मेरा सवाल यास्मिन से ये है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है. फटाफट से आंसर बताइए.
2: द गंगा रिवर.
1: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशन. और आप अगले राउंड में मूव करती हैं.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
0: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
0: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड अ पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे. व्हाट डू वी डू.
5: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स. दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस. नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग.
4: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे.
5: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे. द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स ऑफरिंग सेम डे सिक केयर. वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंड areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है. दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
9: मुझे नौ लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने.
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख की विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
11: अरे कहना क्या चाहते हो.
0: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार.
10: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
6: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 carat gold and diamond jewelry. Visit VIRANIJewelers.com.

0: या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इन जनरल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें महिलाओं को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, या तो वो एकदम बेचारी सी होंगी या फिर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई वीकनेस ही नहीं है। विडाश पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स को डिस्कस कर रही हूं जिनको देख के एक्चुअली फील हुआ यार ये तो अपनी सी कहानी लग रही है। लिस्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीकू को, नंबर दो पे फिल्म इंग्लिश से शशि गोडबोले को, नंबर तीन पे फिल्म सर से रत्ना को, अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अबाउट लापता लेडीज की लेडीज। ये फिल्म आई थी 2024 में, डायरेक्ट किया है इसे किरण राव ने। फिल्म की ओरिजिनल कहानी बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हैं उन्हें लिखा है स्नेहा देसाई ने। और अगर आप इस फिल्म को सरफेस लेवल पे देखोगे तो आप

दो दुल्हनों की हिलेरियस स्टोरी दिखाई देगी जो ट्रेन में लिटरली एक्सचेंज हो जाती हैं, लेकिन अंदर से ये फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक महिला को कभी खुद से डिसाइड करने का मौका मिले तो वो एक्चुअली चाहती क्या है। फिल्म में दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, फूल और जया। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिटी के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म को प्रीची बनाए बिना ये दिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता, अपनी आवाज पहचानना भी एजुकेशन है। जहां फूल का इनोसेंस और जया के एम्बिशन दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। Yes, लापता लेडीज इज फनी, वार्म एंड डिसेप्टिवली सिंपल, बट अंडरनीथ इट्स अबाउट वुमेन डिस्कवरिंग दैट उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। एंड नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट मिसेस। ये फिल्म आई थी 2025 में, डायरेक्ट किया है इसे आरती काड़व ने, लिखा है हरमन बावेजा के साथ साथ आरती काड़व एंड अनु सिंह चौधरी ने। और फिल्म मिसेस की रिचा प्लेड बाय सान्या मल्होत्रा एक न्यूली मैरिड वुमन है। शादी से पहले उसके ड्रीम्स होते हैं, डांस है, अपनी आइडेंटिटी है, बट शादी के बाद सडनली उसकी दुनिया किचन, एक्सपेक्टेशंस और घर कैसे चलाना है में ही सिमट जाती है। और इस फिल्म की सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि यहाँ कोई एक विलन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्टर आरती ने ऋचा को एक एंग्री फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप नहीं बनाया। शी इज इनिशियली एक्साइटेड अबाउट मैरिज।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक।

0: स्टार फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, Only on Mirchi, it's hot.
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, The king of mortgage industry.
4: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
11: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1360.
13: Sirf aapko nahi, Mirchi ke sang ab pure 9 lakh winners ko milega 9 gold chains.
14: Are kehna kya chahte ho?
15: Kyunki is Navratri, Virani Jewelers lekar aaya hai Mirchi Navratran Haar.
13: 9 Navratri Nights, 9 golden opportunities. Har din jeet sakte hain. Gold chain. Participate karne ke liye WhatsApp Navratri to 903-364-7244. That's 9033 Mirchi. Aur tayyar ho jaiye for your 9 rapid fire questions. Presented by Virani Jewelers.
16: On Oak Tree Road, festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
17: Yeah. Meeti Mirchi. Brighten up your day, we will find a way. On Meeti Mirchi.
18: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो
19: मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग।
18: भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हाँ जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहाँ अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सो जो एक नया लड़का इंडस्ट्री में आता है बहुत ही नॉर्मल लुकिंग होता है एंड ही कम्पीट्स विद अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र एंड सो मेनी ऑफ देम. और फिर उसकी डेब्यू फिल्म को उसी साल मिल जाता है फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म. पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम. आज भी 1975 में रिलीज्ड एक बहुत ही कमाल की फिल्म, और मैं बात कर रही हूँ फिल्म रजनीगंधा की. कौन थे इसमें? इसमें थे अमोल पालेकर, हु एक्चुअली ही डेब्यूटेड फ्रॉम दिस. एंड लोगों को बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि उस समय बच्चन साहब की फिल्म, धर्मेंद्र पाजी की फिल्म, सबकी फिल्में रिलीज हो रही थी, और अमोल पालेकर की फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल जाएगा. दैट वॉज नॉट अ सरप्राइज, बिकॉज ऑडियंस ने जाकर के हॉल में ना इस फिल्म को ऑलरेडी सुपर डुपर हिट कर दिया था. आज इसी फिल्म रजनीगंधा की बात होगी. श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
3: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
4: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
3: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
4: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
3: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
4: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
3: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
4: चलो
3: मतलब
4: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
3: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारा,
4: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
3: टाइम खराब कर रहे हैं,
4: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
3: पेशाब लूट रहे हो आप, क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
4: तो मेरा यूरिन
3: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
4: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
3: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
4: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
3: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
4: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
3: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर कंप्लेंट करनी है।
4: मैं निकलवा लूंगा और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
3: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है जा।
4: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे वापस।
3: हां ठीक है, देख ले
4: भाई।
3: हां ठीक है।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
6: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
7: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
10: बिजनेस NJ प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
9: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
11: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
12: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
13: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
15: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
16: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
14: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
18: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
1: Radio Mirchi.
3: If she's in the valley, always cool.
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर साहब ने रेकमेंड किया था कि ये जो फिल्म है ना, इसकी कहानी ऑलरेडी विनिंग कहानी है, लेकिन बासु जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, तो ही सेड कि बासु ये तभी होगा अगर तुम एक न्यू कमर को, एक न्यू फेस को लेके आओगे। वेल, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। इस फिल्म से डेब्यू किया था अमोल पालेकर ने, लेकिन बासु चैटर्जी हु एक्चुअली मेड द फिल्म, उन्होंने कभी भी इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स थे, जो मेन लीड थे, वो अमोल पालेकर के लिए नहीं लिखे थे, उन्होंने लिखे थे बच्चन साहब के लिए। और अगर बच्चन साहब रिफ्यूज कर देते तो ही हैड शशि कपूर इन माइंड। उन्होंने शशि कपूर को बैठा करके जब पूरी कहानी पढ़ी ना, तो शशि कपूर सेड कि ये एक विनिंग कहानी है, लेकिन हाँ, इसमें तुम्हें हम जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं, एक न्यू कमर को लाना पड़ेगा। दैट वॉज हाउ इस फिल्म में अमोल पालेकर आए। और आपको पता है 1975 जिस ईयर में शोले रिलीज हुई, चुपके चुपके रिलीज हुई, उसी साल रजनीगंधा को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग दर मिर्ची में चल रहा है वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाका हार, जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन The grand prize of gold का chain. Let's see हमारी अगली contestant का क्या नाम है. Hello.
3: Hello, hi.
2: Hi, what's your name?
3: Hi, my name is Deepthi.
2: Hi, Deepthi. How are you doing today?
3: I'm doing great. How are you?
2: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
3: Happy Navratri to you too.
2: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
3: Good, good. It's going great.
2: All right. कहाँ से हो आप इंडिया में से?
3: मैं यूपी लखनऊ.
2: अरे वाह, लखनऊ से हैं. तो let me ask you my next question quickly.
3: Yeah, yeah.
2: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना, ठीक है? Within seconds you have to answer कि what is India's national animal?
3: It's tiger.
2: It's tiger. That's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
3: Thank you.
2: Thank you so much for participating, Deepthi. You move to the second round.
1: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. Celebrate this Diwali with RajJewels.com.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी प्राइस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
10: मुझे नौ लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने.
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
1: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार.
11: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
14: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. राजभोग फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट rajbhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
15: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
16: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
17: अब मिर्ची खा.
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई के आकाशवाणी सिनेमा में रिलीज ये फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले जाएगी 1975 में। वो भी ये एक ऐसा साल था जिसमें हमने शोले की रिलीज देखी, चुपके चुपके की रिलीज देखी, बहुत सारी हिट फिल्में देखी, बट रजनीगंधा वॉज द वन दैट एक्चुअली वन एवरीवन्स हार्ट एज वेल। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। अब होता यह है कि डायरेक्टर बासु चैटर्जी एक न्यू कमर अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा को लेकर के आते हैं। उनको फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते, फिल्म के लिए जब रिलीज हो जाती है तो हॉल नहीं मिलते, तो उन्हें थक हार करके मुंबई के आकाशवाणी सिनेमा में इस फिल्म को रिलीज करते हैं। फिर क्या, बाय वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज उस टाइम पे ना फेसबुक होता था, ना इंस्टाग्राम होता था, ना यूट्यूब होता था, ना ही केबल चैनल्स होते थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो ऑफकोर्स नहीं होते थे। सो बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म लोगों तक पहुंची और उसके बाद इट वॉज अ मैसिव हिट। तो सोचो, डिफरेंट हॉल्स में ना रिलीज होकर के भी अगर सिर्फ एक सिनेमा हॉल में रिलीज होकर के कोई फिल्म एक अच्छा काम कर सकती है, तो एक्चुअली में इट्स अ लेसन कि अगर कंटेंट अच्छा है तो लोगों तक पहुंचेगा और हिट होगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
1: And Ajay Devgan के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतूराज, Only on Mirchi, it's hot.

0: Money with Rajjules.com.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
3: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: Listener mein back to back gana sunega.
5: Back to back gana sunega.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस जमाने की बहुत फेमस बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस होती थी अपर्णा सेन। उन्होंने इस फिल्म के लिए इतने सारे पैसे मांग लिए और फिल्म के एक्टर को भी चेंज करने की डिमांड मांग ली कि इतनी बेहतरीन फिल्म से उनको अलविदा कह दिया गया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म रजनीगंधा टुडे। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म फेयर अवार्ड मिला इस फिल्म को इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म। और सोचो 1975 एक ऐसा साल था जिसमें शोले भी रिलीज हुई थी और बहुत सारी आइकॉनिक फिल्में रिलीज हुई थी। रजनीगंधा एक ऐसी फिल्म थी जिसे डेब्यू किया था अमोल पालेकर ने और विद्या सिन्हा ने। ये दोनों ही न्यू फेसेस थे। और शशि कपूर साहब ने ना मूवी के डायरेक्टर बासु चैटर्जी से कहा था कि तुम्हारी विनिंग स्टोरी है, तुम्हारी कहानी में बहुत दम है, इसको डेफिनेटली अवार्ड मिलेगा, लोगों को बहुत पसंद आएगी, बशर्ते तुम एक नया चेहरा लेकर के आओ। बासु चैटर्जी ने अपना हीरो अमोल पालेकर ढूंढ लिया था। फिर वो गए बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस अपर्णा सेन के पास। अपर्णा सेन ने कहा कि भाई मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए और मुझे ये अमोल पालेकर के साथ काम नहीं करना, एक एस्टैब्लिश एक्टर लेके आओ। बासु चैटर्जी ने उनको टाटा बाय बाय कह दिया एंड देन केम विद्या सिन्हा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। रजनीगंधा के गाने भी है मेरे पास, एक एक करके सुनाऊंगी, सो कम राइट बैक।

0: Mitchie, New Jersey. South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, ताल कहाँ, सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, तेरे कर तुम, ना लगे तुम, तेरे कर तुम, ना लगे तुम, हम तुम, नाता साथ, की पाता, लता फात, पता फात, मेरा कस करामत,
1: ताते चिता, ताते चिता, ताते चिता, थैया थैया थै, टकटा दुम, टकटन्या,
0: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: ऋषिकेश दा की ना दो खास बात थी, एक तो वो लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते थे अपनी फिल्मों में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते थे। ये जो गाना आपने सुना इज़ फ्रॉम द फिल्म गोलमाल। आपको पता है ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी जिसके सीक्वेंस अभी तक हम बनते देखते हैं। वेल, ये फिल्म 40 दिन में बन करके ख़त्म हो गई थी और वो भी उनके खुद के बंगलों पे बैंड्रा में। बिकॉज ही थॉट कि भाई लोकेशन से ज़्यादा वो ना स्क्रिप्ट में बिलीव करते थे। कहानी दमदार होनी चाहिए और कहानी आम आदमी की होनी चाहिए। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। सो कम राइट बैक।

0: Mirci.
1: Burga, burga. La vie va la burga. Mirci, burga.
2: Alo?
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है
2: सर?
3: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट।
2: कैंची ले ली सर।
3: लेकिन सिचुएशन है।
2: कोई नहीं है
3: आसपास, है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
2: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
3: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
3: ठीक है।
2: एक बार हरा काट के देख।
3: हरा काट रहा हूँ।
2: धीरे से।
3: 1, 2, 3 Congratulations.
2: ताली बज रही है? कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा है।
3: हाँ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
10: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइन क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव
9: से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
11: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं। पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं। फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं। रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है? और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
4: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड।

0: Breslin, New Jersey.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कान पकड़ करके शशि कपूर ऋषि कपूर को इस पिक्चर के सेट पे ले आए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये गाना है फ्रॉम द फिल्म कभी कभी। मूवी को बनाने वाले यश चोपड़ा साहब और यश साहब ने ये जो विकी का रोल था ना इस फिल्म में, ये ऋषि कपूर को सोच के ही बनाया था। अब ऋषि कपूर वाजंट वेरी एक्साइटेड टू डू दिस फिल्म, तो उन्होंने ना मना कर दिया था। जब ये बात यश जी ने शेयर की उनके अंकल शशि कपूर से, तो शशि कपूर ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऋषि को कौन पकड़ के सेट पे ले आऊंगा। हुआ भी यही वो जबरदस्ती लेकर के आ गए ऋषि कपूर को। अब ऋषि जी ने कहा कि उनकी तो दो दिन के अंदर फ्लाइट है टू न्यूयॉर्क, जहां वो दो महीने के लिए छुट्टी मनाने जा रहे थे। तो आपको पता है क्या किया यश चोपड़ा जी ने, उन्होंने उनको डायरेक्टली सेट पे ले गए और ऋषि कपूर से डेढ़ दिन के अंदर हजारों शॉट ले लिए गए जो कि इस मूवी में यूज हुए फिर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, उस जमाने की बातें चलती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: ऑलराइट, वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाका हार खेल रहे हैं हम। मैं बोले तो प्रिसला, मेरे साथ लाइन पर हमारे अगले कंटेस्टेंट है। हेलो,
2: हाय।
1: हाय, व्हाट्स अप?
2: या आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू?
1: आई एम ग्रेट। नेम?
2: ओह, माय नेम इज सची।
1: हाय साची, क्या चल रहा है?
2: बस अभी तो नवरात्रि चल रही है।
1: ऑलराइट, कैसे जा रही है नवरात्रि? मजा आ रहा है?
2: नहीं, यहाँ तो इंडिया मिस हो रहा है।
1: आई नो, फेस्टिवल के नाम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग। लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी, अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची नो लगता हार।
2: ओके,
1: ऑलराइट। सो साची, क्विकली मुझे ये जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना। मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
2: काजोल।
1: काजोल इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस। ये सची।
2: या थैंक यू सो मच।
1: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो। हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की।
2: Yeah, thank you.
1: All right. Thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi No Lagna Haar.
2: Okay, thank you.
1: Brought to you by Virani Jewelers. Or agar aap bhi participate karna chahte ho to fatafat se navratri type karo 9033647244 par likh kar apne pure naam ke sath bhejo abhi ke abhi, and you could be the next participant in Mirchi No Lagna Haar.
0: Mirchi No Lagna Haar presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com। नवरात एकत स्पिरिट।
4: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटोवे मा
3: रमो गरबा डेली 11-19 October सांजे 7 o'clock थी।
4: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
5: प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
7: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
8: October 24th and 25th, हमर होल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
9: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
13: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
17: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
16: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
18: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किसी को भी दरवाजा नॉक करने तक की परमिश्न नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आबू श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना, ये है फ्रॉम द फिल्म अमर प्रेम, जिसके गाने आज भी सुपर डुपर हिट हैं, और इनका म्यूजिक बनाने वाले आर डी बर्मन साहब।

पंचम दा को जब इस फिल्म अमर प्रेम की ब्रीफ मिली तो उन्हें समझ में आया कि ये फिल्म सिर्फ एक एक नॉर्मल सी रोमांटिक स्टोरी नहीं है, इट्स एन इंटेंस रोमांटिक इमोशनल स्टोरी। तो इनके गानों के लिए, इसके म्यूजिक के लिए, कहते हैं कि पंचम दा सुबह 9 बजे अपने कमरे में, अपने म्यूजिक रूम में चले जाते थे, दरवाज़ा लॉक कर लेते थे, और बीच में जब उनको खाना खाना होता था, भूख लगती थी, तो कोई भी दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता था। उनकी थाली उनके डोर के बाहर रख दी जाती थी कि जब जब उन्हें भूख लगेगी वो दरवाज़ा खोलेंगे और अपना खाना अंदर ले लेंगे। रात के 9 बजे तक ये काम होता था। He used to go inside at 9 a.m. and used to work till 9 p.m. locked in a room. और ऐसा कई दिनों तक चला जब तक इस फिल्म के म्यूजिक इतना खूबसूरत निकल के नहीं आया। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए। गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: natural diamond store. Best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: Radio Mirchi, it's hot.

सनी देओल पे पिक्चराइज्ड है ये गाना, जो कि है फ्रॉम द फिल्म भूलरेविल, और इस फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब लिखने वाले थे वन एंड ओनली जावेद अख्तर साहब। लेकिन आपको पता है कि जावेद साहब को इस फिल्म का आइडिया कहाँ से आया? वो और राहुल रेविल एक्चुअली में पार्टी कर रहे थे, पार्टी नहीं, पिकनिक कर रहे थे लोनावला में, और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। जब जावेद साहब ने वो पढ़ना शुरू किया तो उस जमाने के मुंबई के गैंगस्टर की कहानी निकली थी। बस जावेद साहब को कंटेंट मिल गया और उन्होंने ये फिल्म बना दी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी फिल्म में सिर्फ मेल सिंगर्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म याराना। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फिल्म के सारे गाने जो हैं वो सिर्फ मेल प्लेबैक सिंगर्स ने गाए। एक गाना गाया था इस फिल्म का रफ़ी साहब ने, और बाकी जो पांच गाने थे, बिकॉज देयर वर सिक्स सॉन्ग्स, वो किशोर दा ने गाए। ऐसा जनरली होता नहीं था तब, क्योंकि रोमांटिक गाने होते थे। लता जी का गाना तो डेफिनेटली फिल्मों में डाला जाता था, इफ़ नॉट लता जी तो आशा ताई का गाना होता था। एंड दोनों का मतलब डुएट गाने तो डेफिनेटली होते थे, बट याराना इस फिल्म में एक भी डुएट गाना नहीं था, एक भी फीमेल प्लेबैक सिंगर नहीं थी। पुरानी जीन्स पे कुछ ऐसे ही अनकही बातें जो आपने शायद कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सुनी, वो ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ मैं। सो बस कहीं भी मत जाना, मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
3: हेलो
4: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
3: मैं
4: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
3: तुम कौन हो?
4: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
3: क्यों आ जाऊं?
4: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
3: तुम्हें बात करनी है?
4: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
3: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
4: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं अंकल।
3: अरे किसका अंकल?
4: बेटा तुम्हारा अंकल।
3: ये कब आ गया?
4: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
3: हेलो
4: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
3: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
4: वही लेवल 7।
3: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
4: अग्रेशन।
3: कौन हो तुम मेरे?
4: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
3: अरे तू है कौन, तू ये बता।
4: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
3: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
4: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
3: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
4: ओह माय गॉड लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Kissat, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
3: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
4: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
3: Wait, they can see us on Sunday?
4: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
6: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
5: संडे अक्टूबर 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन, एनजे। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
9: Nine nights, one divine spirit.
10: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
9: Join daily Garva, October 11th to 19th at 7 p.m.
10: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Naam Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
9: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
11: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
12: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
11: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
12: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेंद्र कुमार ने फिर कभी भी अपने सबसे खास दोस्त मनोज कुमार से बात पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ। ये जो गाना अभी आपने सुना ये है फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज होने के बाद रातों रात बड़े स्टार बन गए थे कुमार गौरव एंड विजेता पंडित, दोनों के डेब्यू फिल्म थी ये। ये फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे राहुल रविल और इस पे पैसा यानी इसके प्रोड्यूसर थे कुमार गौरव के फादर राजेंद्र कुमार। अब हुआ ये कि राजेंद्र कुमार चाहते थे कि उनके बेटे की पहली फिल्म है और वो मनो

मनोज कुमार डायरेक्ट करें जो उनके बेहद करीबी दोस्त थे, लेकिन मनोज कुमार ने बहुत पोलाइटली उनको रिफ्यूज कर दिया ये कहते हुए कि अब उनका खुद का होम प्रोडक्शन है और वो अपनी फिल्म क्रांति में बिजी हैं। ये बात राजेंद्र कुमार को बेहद दिल पे चुभी क्योंकि मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिलवाने वाले राजेंद्र कुमार थे एंड हिज फर्स्ट फिल्म वॉज हरियाली और रास्ता। सो ही थॉट कि जब मैंने उनको तब पहली फिल्म दिलाई थी तो मेरे बेटे की पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगे मनोज कुमार, विच ही डिड नॉट। और इसीलिए दोनों ने इस इंसिडेंट के बाद कभी एक दूसरे से बात नहीं करी। पुरानी जींस पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: जिसमें नवरात्रि की 9 nights को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन। लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं। हेलो,
3: हाय प्रिसिला,
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: माय नेम इज जिनाल।
2: जिनाल, हाउ आर यू?
3: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
2: Great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
3: Okay.
2: All right. So are you ready?
3: Yeah. Happy Navratri.
2: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
3: Okay, sure. I'll try.
2: All right. So Bollywood की एक फिल्म है मुन्ना भाई MBBS. उसमें एक character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली,
3: अर्शद वारसी।
2: अर्शद वारसी इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस, ये।
3: या, वेरी एक्साइटेड। या, आई वाज जस्ट, या, इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन, आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड।
2: ये, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। समवन फ्रॉम मिर्ची विल गेट इन टच विद यू कि अब आगे क्या करना है। सो जस्ट कीप एन आई ऑन योर नंबर। ओके,
3: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसिला।
2: ऑलराइट, बाय बाय।
1: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
5: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
1: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: कर आए।
1: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
2: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: अरे कहना क्या चाहते हो,
5: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
3: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
6: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
7: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
6: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
8: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पहले 1 लाख मांगे तो यश चोपड़ा साहब ना जोर से हंस दिए उनके मुंह पे, उसके बाद 3 लाख देने पड़े। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सलीम जावेद साहब की फिल्म जब उन्होंने लिखी जंजीर, बच्चन साहब के साथ जब रिलीज हुई तो सुपर डुपर मैसिव हिट हुई। अब ना सलीम जावेद साहब स्टैब्लिश हो गए थे एज फिनोमिनल राइटर्स कि ये दोनों जब कहानी लिखते हैं तो मूवी सुपर हिट हो जाती है। लेकिन अब जो मैं बात बता रही हूँ वो जंजीर फिल्म के रिलीज होने के पहले की है। स्क्रिप्ट का नाम यानी फिल्म का नाम होता है दीवार, और ये जो दीवार होती है ना इसको लेकर के पहुंचते हैं सलीम जावेद यश चोपड़ा के घर और उनसे कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमने आपके लिए बनाई है, ये सक्सेसफुल मूवी।

मूवी है, ब्लॉकबस्टर है, मेजर हिट है। तो भाई सलीम जावेद साहब ने इस स्क्रिप्ट के लिए 1,00,000 रुपए मांगे। यश चोपड़ा साहब उनके मुंह पे हंस दिए और कहने लगे क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों, क्योंकि ये अमाउंट राइटर्स के लिए किसी ने कभी तब सुना ही नहीं था। सलीम जावेद साहब वापस आ गए, ये स्क्रिप्ट लेकर के वो किसी और के पास नहीं गए, अपने ड्रॉअर में रख दिया और जंजीर के रिलीज होने का वेट किया। जंजीर के रिलीज होते ही जो फैंडम देखा गया फॉर द फिल्म, फॉर बच्चन साहब, उसके 2 दिन के बाद यही स्क्रिप्ट लेकर के सलीम जावेद पहुंचे फिर से यश चोपड़ा के पास और कहा इस बार 3,00,000 फॉर दीवार। और यश साहब ने दिए भी 3,00,000 रुपीज। वेल, इसी फिल्म दीवार का गाना कमिंग ऑलराइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
1: And Ajay Devgan के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है कि उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RawJewels.com.
3: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट RawJewels.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar. मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

यार इंसानों को तो आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है, लेकिन मुझे लगता है ये जो यूएसए का अक्टूबर है ना, उसको तो बहुत जबरदस्त आइडेंटिटी क्राइसिस होता होगा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी इमरजी सिद्दीकी। क्योंकि यार अक्टूबर डिसाइड रोमांटिक, मतलब एक तरफ ट्रीज अपने कलर चेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेबरहुड में कहीं पम्पकिंस और स्केलेटन्स आ चुके हैं, और इंडियन हाउस होल्ड में भी फेस्टिव डेकोर शुरू हो चुका है। मतलब अक्टूबर का ना प्रॉपर पर्सनैलिटी टेस्ट करो तो रिजल्ट आएगा कि ये तो रोमांटिक भी है, ड्रामेटिक भी है और थोड़ा फिल्मी भी। तो मुझे इस मंथ की यही तो सबसे ज्यादा बात पसंद है कि एक ड्राइव लो अपने नेबरहुड में तो फॉल कलर्स भी दिखते हैं, हैलोवीन डेकोरेशंस भी दिखते हैं, और इंडियन डेकोर नवरात्रि का, दिवाली का भी देखता है, तो यार पूरा फेस्टिव मूड सेट हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर अक्टूबर एक बॉलीवुड मूवी होता तो उसका जॉनर क्या होता? रोमांस, कॉमेडी या हॉरर या फिर मल्टी स्टारर एंटरटेन? जरूर बताना डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब अक्टूबर की इस मल्टी स्टारर शाम में एक सुपरस्टार की एंट्री लाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो
1: हेलो, लाल एक एक हरा, इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन से काटू सर?
0: टाइम कितना है
1: सर? डेढ़ से दो मिनट
0: कैंची ले ली सर।
1: लेकिन सिचुएशन है,
0: कोई भी नहीं है
1: आसपास है, लेकिन हिलने का टाइम नहीं है, हिल नहीं रहे।
0: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
1: ठीक है
0: बताइए। हरा काट के देख।
1: धीरे से। 1 2 3 Congratulations.
0: ताली बज रही है, कौन है?
1: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें। ठीक है,
0: शोरूम का रिबन काट रहा है।
1: हाँ।
0: तो मैं इसी को पूछा फिर तूने?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: लक्ष्मी का दिवाली, सारी खुशियाँ आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
14: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
15: Famous Indian astrologer Dev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
16: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
18: टैप टैप सेंड,

0: Download and send money to India today. TapTap Send Payments Co. is licensed as a money transmitter by NYS, NMLSID
1: 2108069.
2: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार.
3: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप 9933647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस.
4: फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
7: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट. रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन. हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें. इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है.
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: presented by Virani Jewelers.
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और नवरात्रि की धूम तो शुरू हो चुकी है और हमारी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर मिर्ची पर मिर्ची नौ लक का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स में नवरात्रि की जो नौ रातें हैं उसमें हमारे लिसनर्स को मिलेगा नौ बार गोल्ड जीतने का मौका। जी हाँ,

0: दोस्तों विद मिर्ची नौलक का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। तो देखते हैं आज किसकी किस्मत में गोल्ड की चेन है। आज मेरे साथ है सागर जी। तो हेलो सागर, हाउ आर यू?
1: गुड विद निधि, हाउ आर यू?
0: आई एम डूइंग गुड। और सागर जी, आपने पार्टिसिपेट किया है मिर्ची नौ लक्का हार में, और आपको मैं पूछूंगी एक बहुत ही आसान सा सवाल, उसका सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए, ठीक है?
1: ओके,
0: चलिए। तो नवरात्रि है और नवरात्रि वाला ही सवाल है। आपने वो गाना तो सुना होगा, ढोली तारो ढोल बाजे, राइट? उस गाने के एक्टर कौन है?
1: सलमान खान।
0: अरे क्या बात कर रहे हो, पक्का?
1: लॉक कर ही दो अभी, चलो
0: कर ही दो। इसमें गलती हो ही नहीं सकती, इतना आसान सवाल है। क्या बात है सागर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मौका मिलता है फाइनल राउंड खेलने का, जिसमें आप जीत सकते हो गोल्ड चेन, ठीक है?
1: थैंक यू।
0: और एडा दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो मिर्ची नौ लक्का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स, तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए 9033647244 हमारे नंबर पर, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @rjmirchisiddhi। और तब तक के लिए आपके लिए नवरात्रि वाला ये अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: presented by Virani Jewelers.
1: Virani Jewelers presents Mirchi. 9 lakh ka haar chal raha hai Mirchi par. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Aur mere saath mein kaun hai? Hello.
2: Hi Priscilla. Good morning. This is Parth.
1: Hi Parth. Good morning. Happy Navratri.
2: You too.
1: So what's happening? Navratri mein kya chal raha hai?
2: Nothing much. Just driving to work. you know. I wish I was back in India right now because I'm from Vadodara, and I don't know if you know, but that's like a big celebration there of Navratri
1: in Gujarat. Vadodara.
2: Yes.
1: Alright, game show.
2: Majama.
1: Alright, mujhe itna hi Gujarati aata hai, but I'm going to ask you the question for you to enter the next round. Okay, are you ready?
2: Yes.
1: Alright, so are you a 90s kid?
2: Yes.
1: Okay, so this one would be easy for you. Tell me who played the famous villain Mogambo in Mr. India, quickly.
2: That was Amrish Puri.
1: Amrish Puri is the correct answer. Thank you so much, Parth, for participating. Congratulations.
2: Thank you.
1: You've moved to the next round, and someone from Mirchi will contact you soon. Thank you so much for participating. And
2: all right.
1: Just keep an eye on your phone number. Someone will get in touch with you. Okay?
2: Okay. Sounds good. Thank you for playing so much nice songs and, you know, for your show.
1: Oh, my pleasure. Thank you so much.
0: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: From the finest kitchens in India, a thrill of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
7: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
8: October 24th and 25th, हमर होल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रांच, New Jersey. Register today at my3usa.org.
9: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
10: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
11: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
11: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Beta, shaadi next week hai aur tumhara abhi paise bhejta hu, sirf dialogue hi hai.
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद।
14: इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
18: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
18: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
17: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islin।
19: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देख के पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं, और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
20: Paid for by Desi Blue, DesiBlue.org. Not authorized by any candidate or candidates committee.
21: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
21: अरे कहना क्या चाहते हो?
22: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
2: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
23: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
24: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
25: तेरा क्या होगा कालिया?
26: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
25: अब मिर्ची खा।
27: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

नवरात्रि में ना केम छो का कभी कभी जवाब अच्छू भी होता है। शब शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और न्यू जर्सी में अक्टूबर आते ही एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो लोग नवरात्रि के आउटफिट प्लान कर रहे होते हैं या फिर हैलोवीन के आउटफिट प्लान कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ घर में टिश्यूज, कफ ड्रॉप्स और गर्म चाय का स्टॉक बढ़ रहा होता है, बिकॉज फ्लू सीजन इज ऑफिशियली हियर। जरूर होता है जो छींकने के बाद कहता है कि अरे यार कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है। और हर साल यही वो इंसान होता है जो फ्लू से सबसे पहले ग्रस्त होता है। तो जी हाँ, अगले दिन पूरे घर में सबकी आवाज आरजे जैसे सीधा हस्की सिंगर जैसे बन जाती है। लेकिन अपना ख्याल रखिए दोस्तों, रेस्ट कीजिए, फ्लू शॉट अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। लेकिन एक सवाल कि यार घर में जब सर्दी हो जाती है तो सबसे पहले क्या बनता है? अदरक वाली चाय, हल्दी का दूध या मम्मी का कोई स्पेशल नुस्खा? जरूर बताना डीएम में और इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और जब गला थोड़ा रेस्ट मांग रहा होता है ना, तो गाने की जिम्मेदारी हम ले ही लेते हैं। इसीलिए आप ही के लिए अगला बॉलीवुड फेवरेट ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह।

0: ना सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
1: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
2: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 days pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
9: लिसनर एम आई, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और हम पूरी तरह से तैयार हैं नवरात्रि के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी धूम होने वाली है। नवरात्रि के 9 रातें और 9 मौके आप सबको गोल्ड जीतने के। तो आज किसको गोल्ड जीतने का मौका मिलता है, किसकी किस्मत चमकती है, चलिए देखते हैं। मेरे साथ है कॉल पर मनीष कुमार जी। नमस्ते मनीष जी।
2: नमस्ते।
1: क्या आप तैयार हो नवरात्रि के लिए?
2: एकदम।
1: क्या बात है, कौन सा नवरात्रि का फेवरेट गाना है आपका?
2: ढोलीडा।
1: चलो, अगर आपने और टाइम लिया होता ना तो मैं बोलती आप बिल्कुल तैयार नहीं हो।
2: नहीं, एक्चुअली हम तो अभी तैयार, मतलब अभी तो हम नवरात्रि के लिए जा रहे हैं, मतलब बकायदा, मतलब तैयार होके।
1: क्या बात है, चलिए तो मतलब एकदम गाने वगैरह सब रेडी है, डांडिया रेडी है और मेरा सवाल भी रेडी है आपके लिए। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल पूछने वाली हूँ मैं, इसका जवाब एकदम फटाफट आना चाहिए आपको, और अगर इसका जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए। ठीक है?
2: ठीक
1: है। चलिए, तो आपका सवाल है जो बहुत ही आसान सा सवाल है कि ये जो एरोप्लेन होता है ना, उसके पेट्रोल का प्राइस कितना है?
2: एरोप्लेन के पेट्रोल का प्राइस? एरोप्लेन में पेट्रोल नहीं होता है।
1: क्या बात कर रहे हो, कैसे चलते हैं एरोप्लेन?
2: केरोसिन।
1: तो केरोसिन का प्राइस कितना है?
2: $8.34।
1: हे भगवान, ये आप पक्का तुक्का बता रहे हो ना?
2: मतलब इट्स अ स्पॉन्टेनियस आंसर, राइट? मतलब
1: नहीं, मैं मजाक कर रही थी मनीष जी, आपके लिए ये सवाल नहीं था, बट वेरी गुड अटेम्प्ट। ऐसी ही एनर्जी चाहिए हमें आपके इस अगले सवाल के लिए। तो ये जो सवाल है बॉलीवुड का, बहुत ही आसान सा सवाल आपके लिए है कि अपना जो गाना है बहुत ही प्यारा सा, नगाड़े संग ढोल बाजे, इसमें एक कपल है, बहुत ही प्यारा सा कपल जो रियल लाइफ में भी कपल है, वो कपल का नाम क्या है? आपने पेट्रोल का प्राइस, केरोसिन का प्राइस ज्यादा फटाफट बताया।
2: दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह।
1: क्या बात है, एकदम सही जवाब। लेकिन ये बड़ी अजब बात है, आपने पेट्रोल केरोसिन का प्राइस जल्दी बताया था इससे। चलिए, वेरी गुड मनीष जी, आपसे हम मिलेंगे फाइनल राउंड में जहां आपको मिलेगा मौका टू विन गोल्ड चेन। ठीक है?
2: ठीक है।
1: ऑलराइट, और दोस्तों अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि एंड पक्का आसान वाले सवाल पूछूंगी, केरोसिन का प्राइस नहीं पूछूंगी जैसा कि आपने देखा। तो आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244 या फिर मेरे इंस्टा पे @RJMirchiSiddhi SIDDHI। तो चलिए अभी बजाते हैं मनीष जी का फेवरेट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लाख का हार, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: are you? Shyam Sharda. Let's do not
1: donkey, have a funky time. कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही ना हीरो का चेहरा याद आ जाता है, लेकिन कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही सीधा दिमाग में गाना बजने लगता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी, और आवारापन 2 वही एक फिल्म है जिसका नाम सुनते ही ना दिमाग में तो यार ओरिजिनल आवारापन के गाने चलने लगते हैं, जैसे कि इमरान हाशमी का वो इंटेंस अंदाज, तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, यार एक अलग ही म्यूजिकल मूड था उस फिल्म का। और अब सीक्वल प्राइम वीडियो पर आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात लगती है कि जब भी किसी फिल्म का म्यूज़िक इतना ज़्यादा आइकॉनिक होता है ना, तो सीक्वल से भी एक्सपेक्टेशन सिर्फ स्टोरी की नहीं होती, ऑडियंस उस ओरिजिनल फीलिंग को भी कहीं ना कहीं ढूंढती है। तो आप भी बताइए कि आवारापन का नाम सुनते सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा गाना आता है। टेल मी ऑनेस्ट एट आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और क्योंकि बात शुरू है म्यूजिक से, तो चलिए उसी नॉस्टैल्जिया को कंटिन्यू करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची विद माय फेवरेट आवारापन सॉन्ग राइट हियर, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na wird bala murga. Milci, murga.
1: Hallo.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर देगा।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर कंप्लेंट नहीं कर देगा,
2: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे।
1: हां ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हां ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास। ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: नो
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
7: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
6: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन, NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
8: बिला तारा रंगीला तारा रंग
9: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
10: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
12: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
13: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
14: 9 nights, 1 divine spirit.
15: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
14: Join daily Garva October 11th to 19th at 7 p.m.
15: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
14: Gather with family and experience the divinity. Visit gayatricenter.org.
16: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
17: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
18: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट, रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
19: दोस्तों, कितने लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम कोई एलिवेटर नहीं बल्कि एक लैडर होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम एक रात का सपना नहीं होता, वो सुबह सुबह आंख खोल के देखा गया एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। हर सपना एक साइलेंट चेकलिस्ट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक जगह जिसे आप घर कह सको। और जब ये सपना रियल होने लगता है ना, तब पता चलता है कि ये लक का नहीं, प्लानिंग का गेम है। और इसी प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप के बारे में आज बात

0: करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज. ओवर टू यू बीश.
1: गुड इवनिंग मिचेल लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज गिविंग यू मॉर्गेज रेट अपडेट्स ड्यूरिंग दिस ड्राइव टाइम. वेल, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इट स्टार्ट्स गेटिंग अ लिटिल कूलर एंड द यूएस मार्केट्स फॉल एज अर्निंग सीजन किक्स ऑफ. Have you ever walked into a beautiful home and said, wow, I could live here, only to wonder, but how I am going to pay for it? Well, you're not alone. A mortgage can help turn your dream of home ownership into a reality. But here's the secret. You don't have to figure everything out by yourself. Understanding your credit, preparing your finances, knowing how much you can afford, and exploring the right loan options are important steps towards buying a home. And remember, you don't need to know everything about mortgages. So friends, buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 7%. 20-year fixed mortgage rate, 6.875%. 15-year fixed mortgage rate, 6.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Credit card debts are at the highest level in the last 30 years. And friends, cash out refinance still remain popular. As homeowners tap newfound wealth, homeownership gained a record amount of home equity in the past year as housing prices surge. More and more homeowners are trying to take cash out of their homes. With values rapidly increasing, and also investors are pulling out on investment properties as well. Remember, listeners, Lion Mortgage also offers second loans or home equity loans. So once again, friends, buying a dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
3: Mirchi, 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
4: मेरा नाम है प्रसला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग. मिर्ची में चल रहा है वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का हार, जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन द ग्रैंड प्राइज ऑफ गोल्ड का चेन. लेट्स सी हमारी अगली कंटेस्टेंट का क्या नाम है. हेलो.
5: हेलो. हाय.
4: हाय, व्हाट्स योर नेम?
5: हाय, माय नेम इज दीप्ति.
4: हाय दीप्ति, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
5: I'm doing great. How are you?
4: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
5: Happy Navratri to you too.
4: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
5: Good, good. It's going great.
4: All right. कहाँ से हो आप इंडिया में से?
5: मैं यूपी लखनऊ.
4: अरे वाह, लखनऊ से हैं. तो let me ask you my next question quickly.
5: Yeah, yeah.
4: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना, ठीक है? Within seconds you have to answer कि what is India's national animal?
5: It's tiger.
4: It's tiger, that's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
5: Thank you.
4: Thank you so much for participating, Deepthi. Move to the second round.
3: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
6: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
4: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
5: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे। टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
11: 2108069।
12: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाए रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
6: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: Radio Mirchi, it's hot.

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हैप्पी नवरात्रि न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों देखिए, नवरात्रि की यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां हमारी शुरू तो हो ही चुकी है, उसी के साथ साथ आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार नवरात्रि इज वेरी स्पेशल विद मिर्ची 9 लाख का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। यानी लकी विनर्स जीतेंगे गोल्ड चेन। तो देखते हैं आज कौन ऐसे लकी पार्टिसिपेंट है जिनके हाथ आ सकता है गोल्ड चेन। तो चलिए, मेरे साथ है आज कॉल पर अतुल अहूज।

0: Ja, hello Atul.
1: Hey Siti, how are you?
0: I'm doing good. How are you?
1: Very good, thanks.
0: तो अतुल, क्या आप सोने की चेन जीतने के लिए तैयार हो?
1: हाँ, बिल्कुल
0: बिल्कुल. तो चलिए, आपके लिए जो सवाल है मेरे पास, बहुत ही आसान सा सवाल है कि अपने जो नवरात्रि है ना, उसमें इतने सारे गाने हैं, उसका एक बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है, नगाड़े संग ढोल बाजे. इसकी जो ओरिजिनल सिंगर है वो कौन है?
1: इसकी ओरिजिनल सिंगर, ओके, लेट मी गेस, ये गुजराती एक सिंगर है. मैं नाम ट्राई कर रहा हूँ याद करने का.
0: गुजराती सिंगर?
1: हाँ, ये आई थिंक कोई इंटरनेशनल में भी आई थी, बट आई थिंक उसके बाद ओरिजिनल सॉन्ग श्रेया घोषाल ने इसको रिकॉर्ड किया था.
0: आप गुजराती सिंगर से इंडियन आइडल से श्रेया घोषाल पे गए हो. देखिए, आपको ये गाना फिर से सुनना पड़ेगा आफ्टर दिस, बट श्रेया घोषाल इज राइट. तो जी हाँ, श्रेया घोषाल का गाना है. It is one of the most iconic songs of Shreya Ghoshal. तो इसके बाद मैं आपके लिए यही गाना बजाने वाली हूँ, आप अच्छे से सुनना. Yes, that is Shreya Ghoshal. आपका guess भी सही था. Congratulations, आप qualify होते हैं हमारे final round के लिए. And मैं आपको बोलूँगी, इस बार जब आप final round के लिए आओगे तो सारे गाने एक बार अच्छे से सुन के आना रेडियो पर ही.
1: बिल्कुल सुन के आऊंगा.
0: चलिए, congratulations अतुल. और दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो मिर्ची नौ लक्का हार, तो जल्दी से टाइप कीजिए नवरात्रि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @rjmirchisiddhi. और अपनी नवरात्रि की शॉपिंग कीजिए विरानी ज्वेलर्स के स्टोर पर ऑन ओकली रोड इजलिन न्यू जर्सी. और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट.
2: मिर्ची नौ लख का हार, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: लक्ष्मी का इस दिवाली आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन का रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: अरे कहना क्या चाह रही,
11: विरानी है मिर्ची नवरात्र।
9: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। RaniJewelers.com।
13: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Batting to kare karte hain, Virat ek hi hota hai.
17: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
16: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
18: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से

0: चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: presented by Veerani Jewelers.
1: Happy Navratri New Jersey, मैं हूँ आपकी मर्जी सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस नवरात्रि की धूम में। दोस्तों देखिए, नवरात्रि की धूम तो जोरों शोरों से यहाँ पर शुरू है क्योंकि मिर्ची नौ लक का हार brought to you by Veerani Jewelers दे रहा है सोने की चेन्स टू लकी विनर्स। और आज हमारे साथ सोने की चेन जीतने के लिए जो कॉलर है उनका नाम है बबीता जी। नमस्ते बबीता जी।
2: नमस्ते नमस्ते,
1: हैप्पी नवरात्रि बबीता जी। आपकी नवरात्रि की तैयारियाँ कैसे चल रही है?
2: चल रही है बस रोज टांगे खेलने जाते हैं।
1: क्या बात है, कोई मिठाई विठाई खाते होगी नहीं आप?
2: मिठाई तो चल रही है ये।
1: चलिए, आपकी फेवरेट मिठाई क्या है नवरात्रि स्पेशल?
2: नवरात्रि स्पेशल तो मेरी हलवा, मूंग दाल का हलवा।
1: क्या बात है, मूंग दाल का हलवा मेरा भी बहुत फेवरेट है। और मैंने सुना आपने पहले शायद मोदक बोला।
2: नहीं, मोदक
1: अभी
2: गणपति का हो गया ना।
1: जी जी, बट देखिए मोदक वो भी है कि गणपति में भी चलेगा, नवरात्रि में चल, आते रहो लाते रहो।
2: तो एंजॉय करनी है ना।
1: बिल्कुल, तो चलिए उसी के साथ पूछते हैं आपको आज का सवाल। अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए टू विन गोल्ड चेन, ठीक है?
2: यस।
1: चलिए तो देखते हैं आपका नवरात्रि के जो गाने हैं उनका नॉलेज कैसा है। एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, मैंने पायल है छनकाई अब तो आ जा तू हर जाई, ये किस फेमस सिंगर ने गाया है? यार ये तो एकदम टॉप ऑफ द टंग होना चाहिए।
2: फाल्गुनी पाठक
1: है। क्या बात है, इतना टाइम वैसे आपको नहीं मिलना चाहिए था, बट चलिए ठीक है, अभी फाल्गुनी जी ने भी आपको माफ कर दिया। तो अब आप क्वालिफाई तो हो रहे हो अगले राउंड के लिए, फाइनल राउंड के लिए। लेकिन देखिए कंपटीशन तगड़ी होने वाली है, तो प्रिपेयर करके आना, इस बार इतना टाइम नहीं मिलेगा हमारे फाइनल राउंड।
2: ओके ओके ओके।
1: तो चलिए बबीता जी, आपसे मुलाकात होगी हमारी वीरानी ज्वेलर्स के स्टोर पर, जहाँ होगा हमारा फाइनल राउंड और वहाँ पर आप जीत सकते हो गोल्ड चेन, ठीक है?
2: ओके,
1: चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस बबीता जी। और दोस्तों अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो मिर्ची नौ लक का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स में, तो आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे मिर्ची के नंबर पे भेजिए 9033647244। या फिर दोस्तों आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची नौ लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

बॉलीवुड में जब भी कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा परफेक्ट लगने लगे ना, तो समझ जाओ पिक्चर में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। शमशाद द लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मर्ची सुद्दी। और अक्टूबर में यामी गौतम की नई नवेली को लेकर भी काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी है। मतलब कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का मिक्स, मतलब एक ही फिल्म में हंसी भी, मिस्ट्री भी, और वो फीलिंग भी कि ये फैमिली जितनी सीधी दिखती है उतनी ये है नहीं। और मुझे यार हॉरर कॉमेडी के जॉनर ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि एक सेकेंड आप डर के मारे आंखें बंद करते हो और अगले ही सेकंड कोई ऐसा डायलॉग बोल देता है जिससे हंसी निकल जाती है। और इंडियन फैमिली सेटअप में तो कैरेक्टर्स खुद ही इतने अनोखे होते हैं कि कॉमेडी क्रिएट करना ना और भी आसान हो जाता है। तो आप भी बताओ दोस्तों, हॉरर कॉमेडी में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? डर के बीच कॉमेडी या कॉमेडी के बीच अचानक आने वाला डर? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और अब सस्पेंस को साइड में रखते हैं क्योंकि अगला गाना है फुल ऑन बॉलीवुड एंटरटेनमेंट ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Kabana. Murga, murga. La vidva la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो।
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं, जरा आपके बारे में एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ, ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैं क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। दिस गोल्ड अपडेट जूल्स, किंगडम ऑफ जूल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स साइल।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां, सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
11: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
12: संडे अक्टूबर 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन एनजे। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
13: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम, साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
14: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October. विजिट कल्याण ज्वेलर्स at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. To grab this offer, conditions apply.
15: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।

चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं। पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं, फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं, रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
3: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
8: ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, न्यू जर्सी के लिविंग रूम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी, और वीकेंड ऑफिशियली अराइव कर चुका है, रिमोट लोकेट हो गया है, फैमिली ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो क्या देखने वाले। लेकिन स्नैक डिपार्टमेंट में एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है। जी हाँ, मतलब नॉर्मली यार पॉपकॉर्न की न्यूज में ना ज्यादा सस्पेंस नहीं होता, पॉप करो बोल में डालो और डन। लेकिन इस बार स्टोरी में ट्विस्ट है, यानी हमारे इंडियन किचन्स का वो फेमिलियर गोल्डन इंग्रेडिएंट हल्दी अब पहुंच गया है पॉपकॉर्न्स तक। यस, टर्मरिक एंड पॉपकॉर्न आर टुगेदर, यानी फेमिलियर क्रंच के साथ एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड देसी फ्लेवर। और इस ब्रेकिंग स्नैक न्यूज के सेंटर में है दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, टर्मरिकली डिलीशियस। यानी अगली मूवी नाइट पर हेडलाइन खुद वेरीफाई कीजिए, आज ही ले आइए फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और अब स्नैक बुलेटिन कंप्लीट करते हैं, चलिए थोड़ी रियल हेडलाइन से ब्रेक लेते हैं और बॉलीवुड के सुरों में चलते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Veerani Jewelers.
1: All right, Veerani Jewelers presents Mirchi 9 lakh ka haar khel rahe hain hum. Main bole to Priscilla, mere saath line par hamari agli contestant hai. Hello.
2: Hi.
1: Hi, what's up?
2: Yeah, I'm doing good. How are you?
1: I'm great. Name?
2: Oh, my name is Sachi.
1: Hi Sachi, kya chal raha hai?
2: Bas abhi to navratri chal rahi hai.
1: All right, kaise ja rahi hai navratri? Maza aa raha hai?
2: Nahi, yahan to India miss ho raha hai.
1: Oh, I know. फेस्टिवल के नाम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ. लेट्स सी अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची नो लक का हार.
2: ओके
1: ऑलराइट सो सची क्विकली मुझे जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना. मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
2: काजोल.
1: काजोल इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशंस. ये सची.
2: या थैंक यू सो मच.
1: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो. हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की.
2: Yeah, thank you.
1: All right. Thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi No Lag Ka Haar.
2: Okay, thank you.
1: Brought to you by Veerani Jewelers. Or agar aap bhi participate karna chahte ho to fatafat se navratri type karo 9033647244 par likh kar apne pure naam ke sath bhejo abhi ke abhi and you could be the next participant in Mirchi No Lag Ka Haar.
0: Mirchi No Lag Ka Haar presented by Veerani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: Are your grocery bills giving you sticker shock every week? Are you cutting down on travel because of high gas prices? And why are we at war with Iran and Canada? Trump is making such a mess of everything for the common man while enriching himself and his billionaire friends. Let's vote for all Democrats this November so we can have a Congress that actually does its job. We don't need
5: by Desi Blue, DesiBlue.org, not authorized by any candidate or the
6: खरीदने RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए. गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
7: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
8: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
9: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
8: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
10: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
11: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
12: Listener mein back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: presented by Virani Jewelers.
1: हेलो न्यू जर्सी एंड हैप्पी नवरात्रि. मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दीक और फिलहाल नवरात्रि की धूम यहाँ पर शुरू है विद मिर्ची नौ लख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स, जिसमें लकी विनर जीतेंगे सोने की चेन. तो चलिए देखते हैं आज कौन हो सकते हैं वो लकी विनर. एंड आई हैव विद मी विजय जी. नमस्ते विजय जी.
2: नमस्ते जी.
1: सो विजय जी, आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे पास, नवरात्रि से जुड़ा सवाल है. उसका सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हैं हमारे फाइनल राउंड के लिए. तो क्या आप तैयार हो?
2: Yes.
1: चलिए, तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, नवरात्रि का ही है, डांडिया का गाना है. मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न जले. ये गाना आपने सुना होगा. वो गाना कौन सी मूवी का है?
2: लगान. लगान.
1: पक्का?
2: पक्का.
1: वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप क्वालिफाई होते हो हमारे अगले राउंड के लिए. और दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो मिर्ची नौ लख का हार में, तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए 9033647244 या फिर मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI. और आप भी हो सकते हो वो लकी विनर जिसे मिलेगी गोल्ड की चेन ऑन दिस स्पेशल ओकेशन ऑफ नवरात्रि. तो दोस्तों, आज ही रजिस्टर कीजिए और तब तक के लिए आपके लिए नवरात्रि का ये स्पेशल गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
13: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
14: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
15: अरे कहना क्या चाहते हो?
16: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
14: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
17: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
18: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन।

0: हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।

पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10। क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल।

छोटी जगहों की एक खास बात होती है कि न्यूज चैनल से पहले पूरे मोहल्ले को ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्राइम वीडियो पर दुपहिया का सेकेंड सीजन इसी स्मॉल धड़कपुर के लोग, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स और एक मोबाइल टावर आने से शुरू होने वाली नई नई कॉम्प्लिकेशंस।

गजराज राव और रेणुका शाहने जैसे एक्टर्स के साथ ना मुझे ऐसे शोज का ह्यूमर काफी रिलेटेबल लगता है, क्योंकि यहाँ कॉमेडी किसी ग्रैंड सेटअप से नहीं बल्कि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग और लोगों के रिएक्शंस के वजह से होती है। वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया में किसी भी मोहल्ले में कुछ भी हो जाए, एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे सबसे पहले सारी बातें पता चल ही जाती है। तो आपके फैमिली या फ्रेंड ग्रुप का ऑफिशियल न्यूज रिपोर्टर कौन है? टेल मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और अब धड़कपुर के हंगामे से सीधा बॉलीवुड की सुरत तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड में कंफ्यूजन एक बार शुरू हो जाए ना तो एक झूठ को संभालने के लिए 10 नए एक्सप्लेनेशंस रेडी करने पड़ते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। और आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की उड़ता तीर को लेकर जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं ना, उसने मुझे बॉलीवुड की एक फेवरेट कैटेगरी की याद दिला दी, कन्फ्यूजन कॉमेडी। यानी वो फिल्में जहाँ एक गलत आइडेंटिटी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इतने सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू कर देते हैं कि ऑडियंस बस सोचती रहती है कि अब ये हीरो यहाँ से निकलेगा कैसे। जैसे कि प्रिया दर्शन के काफ़ी सारे मूवीज, हेरा फेरी हो, फिर हंगामा हो, और आयुष्मान का जब नाम आता है तो मुझे वैसे भी स्लाइटली अनयूजुअल कैरेक्टर्स और ऑफ बिट सिचुएशन याद आ ही जाते हैं, क्योंकि आयुष्मान हो और हट के कैरेक्टर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जहां जोक से ज्यादा सिचुएशन ही फनी हो। तो आप भी बताइए कि आपको कौन से टाइप की कॉमेडी पसंद है, हेरा फेरी जैसे फुल कंफ्यूजन या बधाई हो जैसे एवरीडे लाइफ कॉमेडी। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो चलिए अब कंफ्यूजन खत्म, म्यूजिक शुरू, यानी अगला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Burga, burga. La virgola la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर, आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर, ये दो है, एक लाल है, एक हरा, इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है,
2: कोई नहीं है
3: आस पास है, लेकिन हिलने का टाइम नहीं है, हिलने का टाइम
2: नहीं
3: है, हिल नहीं रहे,
2: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
3: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: फटना नहीं चाहिए, आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
3: ठीक है ठीक है,
2: बताइए एक बार, हरा काट के देख,
3: हरा काट रहा हूँ
2: धीरे से।
3: वन टू थ्री, कंग्रेचुलेशंस।
2: ताली बज रही है, कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें। ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा है।
3: हाँ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
6: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
7: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
6: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं?

0: आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
3: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
4: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
3: संडे अक्टूबर 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन, NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
5: बिला तारा रंगीला तारा रंग
4: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
6: व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
12: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
13: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
13: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
19: मिर्ची, फ्रेश माल।
20: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: presented by Virani Jewelers.
1: केम छो न्यू जर्सी, हैप्पी नवरात्रि। मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और यहाँ पर मेरी डांडिया तैयार है, मेरी प्लेलिस्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है क्योंकि नवरात्रि आ चुकी है और उसी के साथ साथ मिर्ची नौ लख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स में आपके लिए सोने की चेन भी तैयार है। तो चलिए आज कौन जीतता है सोने की चेन, मेरे साथ है कॉल पर बहुत ही प्यारी सी आवाज नंदना कोंदूर। नमस्ते नंदना जी।
2: Hello.
1: How are you?
2: I'm good. It's so nice to hear from you.
1: It's our pleasure and thank you so much for participating in Mirchi Nau Lakh Ka Haar brought to you by Virani Jewelers. तो आपकी नवरात्रि की शॉपिंग हो गई?
2: नहीं, अभी चल रही है।
1: तो चल रही है तो क्या बात है, आज जरूर विजिट कीजिए आप विरानी ज्वेलर्स के स्टोर पर क्योंकि वहाँ पर अमेजिंग ऑफर चल रहे हैं स्पेशली फॉर नवरात्रि।
2: Definitely.
1: Awesome.
2: And we do have a special occasion coming up, so we look forward to shopping there.
1: क्या बात है। तो if you don't mind, would you like to share with our listeners what the special occasion?
2: Well, we are expecting a baby girl in December, so Lakshmi आ रही है।
1: क्या बात है, इससे प्यारी बात और क्या हो सकती है, लक्ष्मी आ रही है स्पेशली नवरात्रि में, ये बात सुनने मिल रही है। इट्स सच अ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: चलिए तो आज आपके लिए ये मेरा एक सवाल है, अगर इसका आप सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए, ठीक है? चलिए तो आपका सवाल बहुत ही आसान सा है, नवरात्रि की धूम है तो मुझे आपको बस एक गाना ऐसा बताना है जिसमें ढोल ये शब्द आता है।
2: ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के दम दम बाजे ढोल।
1: क्या बात है। तो चलिए इसके साथ आपका नॉलेज नवरात्रि के गानों का तो टेस्ट हो चुका है एंड कांग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: और दोस्तों इसी के साथ अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो मिर्ची नौ लख का हार ब्रॉट यू बाय विरानी ज्वेलर्स में, आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेज दीजिए 9033647244 या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और इसी के साथ ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: presented by Virani Jewelers.
1: Virani Jewelers presents मिर्ची 9 लाख का हार, जिसमें हर नवरात्रि की रात को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे लिसनर्स को जीतने की गोल्ड की चेन. इट्स डैम एक्साइटिंग. एंड अभी मेरे साथ अगले कंटेस्टेंट लाइन पर हैं. बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ये सब. मैं हूँ प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. लेट्स सी हु इज ऑन लाइन विद मी. हेलो.
2: Hi, Priscilla.
1: Hi, what's your name?
2: My name is Prabhupreet. You can call me Preet.
1: Hi, Preet. What's up?
2: Everything is good. How are you doing?
1: I'm great. So are you ready to play Mirchi No Luck Ka Haar and Aazmao Your Luck?
2: Sure, why not?
1: Are you nervous?
2: No.
1: Alright, that's great. Nervous होने की कोई बात ही नहीं है. मैं बहुत ही जल्दी एक सवाल पूछने वाली हूँ. एंड अब उसका जवाब आपको देना है बहुत ध्यान से सुनकर. Alright, are you a movie buff?
2: Yes.
1: Alright, so मुझे ये बताओ कि which feature film has the dialogue कितने आदमी थे?
2: Chole.
1: Chole is the correct answer. Congratulations, Preet.
2: Thank you.
1: It was easy, right?
2: Yeah, it was very easy.
1: Alright, so अब आप next round में चले गए हो. नवरात्रि का सेकेंड डे बहुत शुभ है आपके लिए.
2: थैंक यू. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर.
1: या कैसे जा रहे हैं नवरात्रि?
2: नवरात्रि इज गुड. सो फार इज गुड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव कॉल्ड अस फॉर व्हाट यू कॉल दैट पूजा एंड ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड.
1: ऑलराइट.
2: वी डोंट सेलिब्रेट बट या वी टेक पार्ट इन वी जॉइन फ्रेंड्स.
1: ग्रेट. आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो इस दिवाली.

0: दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
8: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट Oak Tree Road, Izzylin, New Jersey टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
9: No!
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, हॉरर मूवीज में एक चीज नोटिस की है, जब भी कोई कहता है कि उस जंगल में मत जाना, बॉलीवुड का हीरो सबसे पहले वही जाता है। शाम शाम दवाई सुन रहे हैं आप, ना आपकी मर्जी सुनती है। और हॉरर की बात इसलिए क्योंकि वन को लेकर एक इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी है। ये वो फोक हॉरर वाली दुनिया है जहाँ डर सिर्फ भूतों से नहीं आता, कभी जंगल की खामोशी, कभी पुरानी कहानियों, और कभी उन चीज़ों से जिसे हम समझ नहीं पाते। और मुझे तो यार इंडियन फोक हॉरर का कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि एक तरफ हमारी दादी नानी की सुनी हुई कहानियां और दूसरी तरफ मॉडर्न सिनेमा का सस्पेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो कभी कभी जो दिखाई नहीं जाती वो ना ज्यादा डराती है। तो आप भी बताओ, हॉरर मूवी में आपको सबसे ज्यादा क्या डराता है? अचानक आने वाले भूत, या वो सस्पेंस जब पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए सुनते हैं ये अगला गाना, क्या पता ये आपके लिए वो चिल्स लेकर आए। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स ऑन।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com। नवरात एकज स्पिरिट।
2: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथी लावी रहा छे पिस्काटवे मा
1: रमो गरबा डेली 11-19 ઓક્ટોબર સાંજે 7 કલાક થી
2: તારીખ 18મી ના રોજ 8મ યજ્ઞ 19મી એ 9મ યજ્ઞ અને 25મી એ શરદ પૂર્ણિમા ગરબા ને મિસ ના કરતા તો ફેમિલી સાથે જોડાઓ અને અનુભવ ડિવિનિટી। વિઝિટ gayatricenter.org ટુડે।
3: सोना खरीदे आरके ज्वेल्स, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

0: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
1: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
2: 9 नवरात्रि नाइट्स।

0: 9 golden opportunities. Har din jeet sakte hain. 1 precious gold chain. Participate karne ke liye WhatsApp Navratri to 903-364-7244. That's 9033-MIRCHI. Aur tayyar ho jaiye for your 9 rapid fire questions. Presented by Virani Jewelers.
1: On Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
2: Listener mein. बैक टू बैक गाना सुनेगा
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
5: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा एट @RJMirchiSiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए मिर्ची। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: स्टोरी का पार्ट वन, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो चलते चलते गिर जाता है। स्टोरी का पार्ट टू, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो साड़ी चनिया चोली वगैरह नहीं संभाल सकता है। स्टोरी का पार्ट नंबर थ्री ये है कि मैंने चनिया चोली पहनकर म्यूजिकल चेयर्स खेलना अटेम्प्ट किया। ऑब्वियो मैं गिरने वाली थी, बट आई वॉज होपिंग दैट आई फॉल ऑन सम रियली क्यूट गाय। लेकिन मैं ऑफकोर्स पुष्पा मासी की गोदी में गिरी। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग, आई कॉन्ट टेल यू। मतलब लाइक जस्ट द फैक्ट दैट मैं पुष्पा मासी की गोदी में बैठी हुई थी, क्योंकि आई वॉज लाइक म्यूजिकल चेयर्स तो चले जा रहे हैं, मैं आउट भी हो गई हूँ, लेकिन पुष्पा मासी इज इन नो रश टू पुश मी ऑफ हर लैप। इट वॉज द मोस्ट एम्बैरेसिंग गरबा पार्टी ऑफ माई लाइफ, जो कल ही मेरे साथ हुआ है। तो अगर आपकी भी जिंदगी में ना चाहते हुए यू हैव एंडेड अप इन एन एम्बैरेसिंग गरबा पार्टी स्टोरी, हिट मी अप एंड टेल मी ऑल अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE। And while you hit me up on your socials, don't go away anywhere. क्योंकि कहीं मत जाना, वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.